मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के, श्रवण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त सन 2026 ईस्वी।

इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन समारंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस समय भोर के 6 बजने को हैं और पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री

0: मंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: यह निर्विवाद सत्य है कि ईश्वर का वास घट घट में होता है, या हम यूं कह सकते हैं प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण और नारद जी के मध्य हुए संवाद के अनुसार एक स्थान पर भगवान कृष्ण नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही कैलाश पर्वत पर अथवा किसी सागर में निवास करता हूँ, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, वही होता है मेरा वास्तविक निवास। ऐसी पवित्र भावना, ऐसा अटल विश्वास जिस भक्त के मन में समा जाए, तब उस उल्लसित स्थिति का आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। जिसने नर नारी में नारायण की मूर्ति का एहसास कर लिया, वह ईर्ष्या अहंकार की मलिनता से स्वतः ही मुक्त हो गया। कहते हैं, हम सबका एक ही मालिक है, हम सभी उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने इस सुंदर संसार की रचना की है। फिर जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत को लेकर ये भेदभाव कैसा? भारत जैसे महान देश में जहाँ सभी धर्मों का समुचित सम्मान किया जाता है, उस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक कहलाने में हमें कितने फख्र का एहसास होता है, कितना गर्व होता है। जिस तरह सभी नदियाँ बहते बहते अंत में एक ही सागर में आकर विलीन हो जाती हैं, उसी तरह प्रभु अथवा खुदा के कई नाम हैं। कोई ईश्वर के नाम से उनकी भक्ति करते हैं, तो कोई अल्लाह ताला के नाम से उनकी इबादत करते हैं। भक्ति के विविध रास्ते हैं, पर अंत में सभी रास्ते एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। भक्ति मार्ग के पथिक को वहाँ पहुँचने पर मिलती है एक अनिर्वचनीय शांति, प्रभु सुकून का एक एहसास, जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती। आवश्यकता इस बात की उस परवरदिगार, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्था कभी खंडित न हो। जीवन यात्रा में चाहे अनुकूलताएं, चाहे प्रतिकूलताएं, सुख हो अथवा दुख हो, हम उस परमपिता परमेश्वर को भूले नहीं। मन में एक विश्वास कायम रहे, अन्यथा बात बनेगी नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहें कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अतः निर्मल भाव, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसका गान करते रहें, उसकी प्रार्थना, साधना, उपासना में लीन रहकर एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उस परमेश्वर का आपके सिर पर वरदहस्त बना रहे, सभी प्राणियों पर उसकी कृपा बनी रहे, यही है नाम की महिमा।
0: श्रोताओं, भी आप हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। विषय था नाम की महिमा। वाचक स्वर था जशपाल सिंह राठौड़ का। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़। हमारे मीटर्स हैं, मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। खेतीहरा वास्ते कार्यक्रम में 7:10 पर आज चर्चा का विषय रहेगा फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। खेत खलिहान कार्यक्रम होगा 12:50 पर, जिसमें आज इस माह के कृषि कार्य विषय पर जानकारी दी जाएगी। चौपाल कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर, जिसमें आज बरसात के पानी का सदुपयोग, मानसून में पशुओं की देखभाल, नरमे की फसल में खरपतवार नियंत्रण और उपलब्ध हुए तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी ग्रामीण श्रोताओं को दी जाएगी। मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर, आज सुनेगा भाग संख्या 322, मुख्य स्वर होगा रविंद्र साठे का। शहनाज मरुमंगल में हमारे आज की कलाकार रहेंगी। प्रोग्राम सुप्रभात आप सुना करते हैं 7:30 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे चंद युगल फिल्मी गीत। दिन में 10 बजे प्रोग्राम होगा आज के फनकार। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। दोपहर 12:05 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, कुछ और फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं। दोपहर बाद 2:30 बजे प्रोग्राम एक ही फिल्म से होगा 8:15 पर। कार्यक्रम सारा की आप सुना करते हैं संध्या 6:05 पर। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा दोपहर 1:05 पर, जिसमें आज सावन में हरियाली का महत्व, AI का बढ़ता प्रभाव, मानसून के लिए इफेक्टिव फेस पैक, बिना गैस बनने वाले स्नैक्स और बहुत सी जानकारी की बातें बहनें अपने इस कार्यक्रम में सुनेंगी।

जो वाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे, जिसमें आज का इतिहास विषय पर जानकारी, फिल्मी गीत और जानकारी की बहुत सी बातें युवा श्रोता अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5 बजे सुन पाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लिखे जाने वाले कार्यक्रमों में शाम 7 बजे किसान वाणी, रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका का कार्यक्रम रात 9:30 पर और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए रिले करेंगे। संध्या 6:40 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को हैं। अब पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल।

0: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेती और आवास्ते कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जानकारी, फसलों में पोषक तत्वों का महत्व।
1: किसान भाइयों, मेनखा और पशुओं में जिया भोजन की आवश्यकता पड़े, बियाई पौधा ने भी विकास करने वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आप बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध कराव। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप छू भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग छूमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करें। जीवन चक्र पूरा करने वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन हुआ और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इंगमा भी नाइट्रोजन को संयोग हुए। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों, नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियाँ छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को नहीं करे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करा जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चल है जिया फसल है बिंगी पत्तियां जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियां के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे बी आपने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करने वास्ते आपने फास्फोरस युक्त खाद जिया डीएपी सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जांच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे इन वास्ते जिके समय अपा फसल की बिजाई करा भी समय फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा अपा पोटाश की। पोटाश जिकी है बा पत्तियां गे माँ जिको भोजन बने बिना पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे जिया पालो सूखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे। पोटैश की कमी को पतो आपने चले पौधों कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो है, तनो कमजोर हो जाए और जिये ही तेज हवा चले तो पौधों नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटाश की कमी पूर्ति करने वास्ते आपने पोटाश युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटाश को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हो। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लो है, फेरस सल्फेट, मैग्नीज है मैग्नीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों, ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटाश बुआई के टाइम पर ही देना आपा और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में दो या तीन बार आपने छिड़काव करना होसी। किसान भाइयों, आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा बी आपने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इंगमा कमी है। तो अबे मैं चालू, राम राम सा।
0: खेती हरा वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे जानकारी, फसलों में पोषक तत्वों का महत्व। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, आइए सुनते हैं मुकरम परिहार की आवाज में ये लोक भजन।

0: और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, आइए सुनते हैं मुकराम परिहार की आवाज में ये लोक भजन।

आसुरी माया और भांति भांति के शस्त्रों से अकेले मेघनाद ने युद्ध भूमि में प्रलय सा मचा दिया है। रावण के अन्य योद्धा भी युद्ध में आ डटे हैं। इधर अपने दल बल समेत विशाल भुजाएं, चौड़ा वक्षस्थल और रक्ताप नेत्रों वाली लक्ष्मण ने मोर्चा संभाला है। भयानक मारकाट मची है, जहां तहां रुंड मुंड उड़ रहे हैं। भयानक निनाद से वातावरण प्रकंपित है। रक्त से गड्ढे भर गए हैं, जिन पर जमी धूल ऐसी दिखाई देती है जैसे अंगारों पर राख की परत बैठ गई हो। ऐसा लगता है कि कोई किसी को जीत नहीं सकता। तभी लक्ष्मण के वाणों से मेघनाद का रथ सारथी समेत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। प्राणों पर संकट आया देख मेघनाद शक्तिवाण चलाता है, जिसके छाती में लगते ही लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर लुढ़क जाते हैं। योद्धाओं की सहायता से मेघनाद उन्हें उठा ले जाना चाहता है, किंतु धरती का भार अपने फन पर वहन करने वाले शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को भला कौन उठा सकता है। अनेक योद्धा लक्ष्मण का अचेत पड़ा शरीर उठा लेना चाहते हैं, किंतु ऐसा करने में असफल होकर लज्जित हो वापस चले जाते हैं। संध्या हो आई, सभी वीर अपने अपने शिविरों में लौट आए, किंतु लक्ष्मण कहाँ हैं? श्री राम का ये प्रश्न मुखरित भी नहीं हुआ था कि हनुमान उन्हें ले आए। अनुज का ये हाल देखकर श्री राम अत्यंत व्यथित हो गए।

मुखराम परिहार की आवाज में अभी आपने ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 होने को हैं। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आसुनी भाग संख्या 322, मुख्य स्वर रविंद्र साठे का।

मानस गाना भी आपने सुना। आज आप सुन रहे थे भाग संख्या 322, मुख्य स्वर था रविंद्र साठे का, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना

है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे ए आसमा, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। श्रोताओ, आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। ये सम्मान उनको भारतीय समाज, भारतीय जनता ने दिया। वे वकील, शिक्षक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आज हम 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देशभक्ति, एकता और शिक्षा का पाठ पढ़ाया। ऐसे महान देशभक्त को हमारा कोटि कोटि नमन। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसथार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: श्रोताओ, नशा एक अभिशाप है। ये एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। नशे के लिए समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू और धूम्रपान जैसे घातक मादकों का प्रयोग किया जाता है। इन जहरीले और नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि तो पहुंचती ही है, उससे सामाजिक वातावरण भी दूषित हो जाता है। इससे समाज और परिवार की स्थिति को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नशे के आदि व्यक्ति को समाज में ही दृष्टि से देखा जाता है। नशे करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ स्वरूप हो जाता है, उसकी समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगिता शून्य हो जाती है। वह नशे से अपराध की ओर अग्रसर होता है और शांतिपूर्ण समाज के लिए कभी शाप बन जाता है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन गई है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों, विशेषकर युवा वर्ग इससे बुरी तरह से प्रभावित है। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पा लेना ही मानव समाज की भलाई है। जो इसके जंगल में एक बार फंस गया, वह स्वयं तो बर्बाद होता भी ही है, साथ में उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है। आजकल देखा गया है कि युवा वर्ग इसकी चपेट में दिनों दिन आते जा रहे हैं। तरह तरह के नशे जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब के चंगुल में फंसकर वे अपना

करियर तो चौपट कर ही बैठते हैं, बल्कि उनका समाज में उपयोगिता भी नगण्य हो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि आजकल नौजवान शराब और धूम्रपान को फैशन और शौक के चक्कर में अपना लेते हैं, और एक बार इस चुंगल में फंसने के बाद उसे निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जब वह पूरी तरह से इस चुंगल में फंस जाता है तो उसके लिए वे अपराध की दुनिया में कदम रखता है। श्रोताओं, जीवन अमूल्य है, इसे अच्छे कार्यों में लगाएं, प्रेम से रहें और इन नशे की आदतों से दूर रहें।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका अपना रहने का घर है, जो उसे धूप, ठंड, बारिश से बचाता है, लेकिन बाकी जीव जो बाहरी तापमान को सहते हैं, बिना छत के रहते हैं, इतना कष्ट सहते हैं क्योंकि वे खुद से कपड़े ओढ़ नहीं सकते, अपना इलाज स्वयं जाकर अस्पताल में करवा नहीं सकते, खाने के लिए, पानी के लिए वे दर दर भटकते हैं। क्या हम उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? हम पूरी धरती के जीवों का तो नहीं से, लेकिन हमारे आसपास जो जीव हमें दिखलाई देते हैं उनकी मदद तो हम कर ही सकते हैं। गर्मियों के मौसम में अपने घरों की छतों पर या फिर बालकनी पर पीने का पानी और दाना पंछियों के लिए रखें। जब आप अपने लिए रोटी बनाते हैं तो 2-4 रोटी बाहर के जानवरों के लिए भी बना लें। गर्मियों की तीखी धूप से बचने के लिए हो सके तो पशुओं के लिए छांव का ऐसा घर बनाएं जिससे वो दोपहर में तेज धूप और लू में विश्राम कर सकें। जब भी आप घर पर खाना बनाते हैं तो जो कचरा बच जाता है वो आप जानवरों को देते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें प्लास्टिक, कांच जैसी कोई चीज ना हो जो पशुओं को नुकसान पहुंचाए। सड़ा हुआ या खराब खाना भी पशुओं को ना दें। पशुओं के पानी पीने के लिए कोई जगह बनाए। अगर किसी पशु या पक्षी को आप घायल अवस्था में देखते हैं तो उसका उपचार आप खुद करें या फिर उसे पशुओं के चिकित्सक को दिखाएं। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं और बड़े बदलाव ला सकते हैं। उनकी मदद करके हम अपना मानव धर्म निभा सकते हैं।

दहलीज फिल्म में अभी आपने महेंद्र कपूर और आशा को सुना? श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपका दोस्त हरप्रीत। प्रोग्राम की

आखिरी प्रस्तुति महेंद्र कपूर की आवाज में, फिल्म का नाम हमराज, गीत के बोल साहिर के और संगीत रवि का। लेकिन गीत सुनवाने से पहले हम कुछ पंक्तियां आपकी नजर कर रहे हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वे लोग सच्चे होते हैं, मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं भी मनुष्यों को पढ़ने का हुनर, सुना है चेहरों पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को हैं अब पहले समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 पर उर्दू में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

0: मंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
3: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।

0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
1: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते 2 गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो।

0: भूटान के 13वें पंच साला मनसूबे के लिए 5वीं भारत भूटान तरक्याती ताबुन मुजाकरात की मुश्तरका सदारत की। 5वें मनसूबे की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने भूटान के 13वें पंच साला मनसूबे के लिए भारतीय हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपये की इमदाद की मजमुई पेशरफ्त और अमल आवरी का जायजा लिया। मजमुई तौर पर 12 नए प्रोजेक्टों और मखसूस मनसूबों के लिए माली ताबुन से मुतालिक 332 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई। इनका ताल्लुक बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल, ज़रात, शहरी सहूलियात और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों से है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा की आलमी टीम, जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर बंदिश लगाए जाने के बाद मरकज़ ने तलब किया है, उसने एल्गोरिदम के ज़रिए जानिबदारी अपनाए जाने और अवामी नज़्म व नस्त में इसके रोल से मुतालिक मामलात पर पूछताछ की जाएगी। सरकारी ज़राए ने हमारे नामा निगार को बताया कि उम्मीद है कि मेटा की इस आलमी टीम से अगले हफ्ते के वस्त में किसी वक्त पूछताछ की जाएगी। मेटा से पूछा जाएगा कि उसका एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और अवामी नज़्म व नस्म में कंपनी का क्या रोल है। ये टीम एक पार्लियामानी कमेटी के सामने भी हाजिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर नए हमले की तैयारी का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया ने अफसरों का नाम बताए बगैर अपनी रिपोर्टों में कहा है कि इस मुजव्वजा हमले का मकसद तेहरान पर खुदसुपुर्दगी के लिए दबाव कायम करना है। ये रिपोर्टें उस वक्त मंजरेआम पर आई हैं जब ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती बातचीत के मुस्तकबिल पर सवाल उठाए हैं और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले के बाद सख्त फौजी जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजराई से पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो गया है। ईरान ने बाद में अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया, जिसे खाम तेल, कुदरती गैस और खाद की तरसील में रखना पैदा हुआ। दिल्ली सरकार ने अपनी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत से फायदा उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लाजमी इस्तेमाल की मुद्दत कार इस माह की 16 तारीख तक के लिए बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत कंडक्टर 15 अगस्त तक पिंक टिकट फराहम करते रहेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया अब्दुल वाहिद। राजधानी दिल्ली से छाए होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि वह आज आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुतादी तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कर्नाटक के मैसूर में वाक़ श्री राम कृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद सकाफती यूथ सेंटर विवेक स्मारक का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत के मुताबिक पेपर लीक के मुकदमात की समाअत अब नए मरहले में दाखिल हो गई है, जिसके सबब बरसों से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मामलात में तेज़ी आएगी। नीज इस तरह के सभी मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में मुंतकली की तैयारी की जा रही है। इस खबर पर रोजनामा इनकलाब ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी काबीना के जरिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी की खबर को उजागर किया है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया गया है।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुमराह नौजवानों के तई हमदर्दी और रहनुमाई अख्तियार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नफरत और गालम गलोज से कभी कोई मसला हल नहीं होगा। सदर जमहूरिया ने पेपर लीक की रोकथाम के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें सख्तर सजा और तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने मगरबी एशिया खित्ते में जारी मुखासिमाना कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। उसने ईरान से जोर देकर कहा है कि वो कमर्शियल जहाज़ों और जहाजियों पर हमले से गुरेज करे। इसी के साथ खबरनामा ख़त्म हुआ।

8:45 और 50 सेकंड आपकी चाय कॉफी ब्रेकफास्ट का स्वाद बढ़ाने के लिए एवरग्रीन मेलोडीज होती हैं यही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। म्यूजिकल दिल्ली की शुरुआत 1 अगस्त 1900

बस को जन्मे शायर एन एम राशिद साहब के शेर के साथ की हसरत इंतजार यार न पूछ, हसरत इंतजार यार न पूछ, हाय वो शिद्दत इंतजार न पूछ। मैं हूँ ना आशनाए वसल हुनूज, मैं हूँ ना आशनाए वसल हुनूज, मुझसे कैफिए विसाले यार न पूछ। सुनीता है आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेंद्र जैन की गई भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की देशवासियों से अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्यस्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। समाचारों के साथ मैं

0: माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक गुरुवार को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह विधेयक छात्रों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक वीडियो में उन्होंने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल जयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को, नोडल अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन नेटवर्क ध्वस्त करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में AI आधारित ऑनलाइन डैशबोर्ड, ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और थर्मल कैमरों के जरिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश भर में आज से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान शुरू हो रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि, ई गिरदावरी की जाएगी। राज्य खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गिरदावरी से प्राप्त आंकड़े, फसल उत्पादन के आकलन, नीति निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आधार बनेंगे। देश भर में आज से स्तनपान सप्ताह शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाना है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। साथ ही मीडिएशन न्याय तक

0: आसान और तुरंत पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बन रहा है। यह बात उन्होंने जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचना से जुड़े विवादों के समाधान में मध्यस्थता की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ऑनलाइन मध्यस्थता में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
1: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
0: सम्मेलन में भारत और विभिन्न कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से दो दिन के उदयपुर और राजसमंद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आज उदयपुर के दूध तलाई में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करने के साथ चंदन वन में पौधरोपण करेंगे। इसके बाद झाडोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री उदयपुर में नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाएंगे और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद राजसमंद में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की स्थापना के 39 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड की रोजी रसेल को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से पराजित किया था। आज रात भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे होने वाले फाइनल में उनका मुकाबला इंग्लैंड की चॉन्टिल रीड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भटके हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाने की अपील की। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन सम्मेलन की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता को विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बताया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मुरमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रामकुमार नाथ और साथियों को।

0: भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: मोरमंगल कार्यक्रम में आप राम कुमार नाथ और साथियों को सुन रहे हैं।
2: ओ देवर मारो रे ओ हरी रुमाल वालो रे देवर मारो रे ओ देवर मारो रे ओ हरी रुमाल वालो रे देवर मारो।

मरुमंगल कार्यक्रम में अभी आप राम कुमार नाथ और साथियों को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ युगल फिल्में की सुनवा रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज बेताब फिल्म के इस एक दो गाने के साथ, आवाज़ें शब्बीर कुमार और लता की।

काल ये फिल्म में अभी अपने आशा और किशोर को सुना। ये युगल फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। प्रोग्राम की अगली पेशकश कच्चे धागे फिल्म से, आवाजें कुमार शानू और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत नुसरत फतेह अली खान का।

श्रोताओं, ये युगल फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, डीआरएम 909 किलोहर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज़ें, आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत आर डी वर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

अभी आप सुन रहे थे कुछ युगल फिल्मी गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज पर आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के 10 बजने को हैं। प्रोग्राम सुनिए आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे इन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्म नगमे। आइए पहले सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में शोर फिल्म का गीत। गीत के बोल राजकवि इंद्रजीत सिंह के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। यह है प्रोग्राम की पहली पेशकश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हरप्रीत सिंह की ओर से

श्रोताओं, ये फिल्मी गीते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। प्रोग्राम है आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इनका संगीतबद्ध की अगला नगमा बॉबी फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। हंसी है इस कदर मंजर में, खुद को भूल जाता हूँ। तुम्हारे शहर में आकर मैं खुद को भूल जाता हूँ। नहीं रहती जरा भी होश मुझको आने जाने की, तुम्हारे पास में आकर खुद को भूल जाता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, रहती नहीं कुछ भी खबर मुझको। तुम्हारी याद में मैं अक्सर खुद को भूल जाता हूँ। मेरा सोना भी क्या, जागना क्या, इंतजारे शब पड़ा रहता है ये बिस्तर में, खुद को भूल जाता हूँ। ये मेरा जिस्म, मेरी रूह उसको सौंप दी है मैंने, कोई तो है मेरे अंदर, मैं खुद को भूल जाता हूँ।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: रात सुनसान थी, बोझल थी फजा की सांसें, रूह पर छाए थे बिन नाम गमों के साए। दिल को ये जिद थी कि तू आए तसल्ली देने, मेरी कोशिश थी कि कम वक्त को नींद आ जाए।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ फिल्म का नाम सूरज और चंदा, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आज के फनकार हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लोफर फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके संगीतबद्ध किए नगमे आप सुन रहे हैं। फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, डीआरएम 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 किलो मेगा हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी की ही आवाज, फिल्म का नाम काली घटा। तुमसे एक दिन कहीं मिलेंगे हम, खर्च खुद को तभी करेंगे हम, इश्क तुझको खबर भी है, अब के तेरे साहिल से जा लगेंगे हम। किसने रस्ते में चांद रखा है, उससे टकरा के गिर पड़ेंगे हम। आसमानों में घर नहीं होते, मर गए तो कहां रहेंगे हम। धूप निकली है तेरी बातों की, आज छत पर पड़े रहेंगे हम। जो भी कहना है उसको कहना है, उसके कहने पे क्या कहेंगे हम। रोक लेंगे मुझे तेरे आंसू, ऐसे पानी पे क्या चलेंगे हम। वो सुनेंगी जो सुनना चाहेगी, जो भी कहना है वो कहेंगे हम।

शूरवीर फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल को सुनिए। गीत SH बिहारी का, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का।

अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देखकर ये तड़फ हुई तेरा नाम लेके पुकार लूं। अवतार फिल्म के एक दो गाना, आवाजें किशोर कुमार और लता की।

प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमलता की आवाज, फिल्म का नाम कसम सुहाग की।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम सुना आज के फनकार। आज के फनकार थे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

हिना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा था गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी, शगुन बारासा, हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक शर्मा, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ये फरमाइश हमें मिली है खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी और रमेश चंद्र वर्मा की। सनावत से ही शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले, मामूलवाड़ी बुलढाणा महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, पीएस नहावकर, वसंतराव भोजने, सोनू भोजने, अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जीशान खान, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, श्रीकरणपुर से पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर।

कटारिया। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी, मंडी केसरी सिंहपुर से श्यामलाल राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार और चिमनलाल, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। प्रोग्राम की अगली पेशकश शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फरमाइश है आप सबकी, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, बोरखेड़ा पितरामल मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नहाटा, दीक्षा, कुश मूणत, बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिठा, अलका मिठा, चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, मेलबर्न से आदर्श पाल सिंह जोसन, वैंकूवर से रोबिन सिंह जोसन, गांव पजोनिया उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, अयान बाबू, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, अरायन से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, पूनम चालिया, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। और ये फरमाइश हमें मिली है नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा की तरफ से, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा की तरफ से। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं गुलामी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं अनुरोध गीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबके लिए नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, केसरी सिंहपुर से राजकुमार ठठई, कमल ठठई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा, श्रीगंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी धनराज बंसीवाल, चक 58 एनपी रायसनगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपीराम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट, मोनिका

रानी धनराज बंसीवाल, चक 58 NP रायसनगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी हरवंश लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित कुमार नरेंद्र कुमार मीनाक्षी मलखट मोनिका गीतांजलि मलखट और इनका पूरा परिवार। थारिया ढाणी हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया। संगरिया से श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा। गांव घमंडिया से जगदीश ढुकिया, प्रमीला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढुकिया और दोहिती ईवा धारणिया। ये फरमाइश है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी की तरफ से। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की, तानिया नारंग। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति, गुरमंत कौर, मनु। ये फरमाइश हमें मिली है सुरजा राम फूलिया की सूरतगढ़ से। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। और सादुलशहर से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। आप सभी सुनना चाहते हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आशा भोसले और साथियों की।

आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और इनके साथ हैं निवान शर्मा। ज़िला अम्बागढ़ छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव 5 MD पथरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, अनम यशफ अब्बासी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा। भादरा अनूपशहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन लाल शर्मा, कृष्ण कुमार, महावीर लोहरा और इनके परिवार के लोग। ये फरमाइश हमें मिली है सूरतगढ़ से बेगराज, महावीर, रोशन, सुरेंद्र, बुद्धराम, अली और श्रवण चिंपा की तरफ से। उन्हेल मध्य प्रदेश से भैरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाकतरिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांव ढाणी लाल खां से जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां। और ये फरमाइश हमें मिली है नई दिल्ली से। लिखने वाले हैं अनिल गौरव, कविता और मानसी अरोड़ा। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं तपस्या फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की।

श्रोताओ, इस समय आप लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम को सुन रहे हैं फिल्म है एक दूजे के लिए। इस गीत से पहले जो कार्यक्रम में व्यवधान रहा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।

0: பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற.
1: கியா
0: தும்
1: தேரி மேரி.
2: जो तो गीत आपने सुना फिल्म थी एक दूजे के लिए, फरमाइश थी आप सबकी अलीका डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सरबजीत, रानी सोनू, रजनी, हिंगड़ी आलोट से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, करणवीर हाउस भुच्चो कैंजिया पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत, हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल, और इनके साथ हैं सुरेंद्र भादु. ये फरमाइश हमें मिली है जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, असम से हितेंद्र दास, कलाना भाद्रा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान सहारण, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, फाजिलका से रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और इनके साथ हैं साई गायकवाड़, बठेना छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, मुरली, खूबचंद वर्मा, मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और इनके साथ हैं गुड्डू, गांव 4M से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जशदीप और ये फरमाइश हमें मिली है रानी झाम, बिट्टू झाम की, रानी बाजार बीकानेर से, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, रायसेनगर से धनराज भांबू, सोहनलाल जांगीर, चेतन राम सारस्वा, प्रदीप सारस्वा, राजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय कासनिया और आशीष भांबू, और सूरतगढ़ से लेखराज, पवन कुमार, रवि कुमार, सुरजीत सिंह, कुंदन लाल, युवराज सिंह और उदय सिंह. श्रोताओं, प्रोग्राम की अगली पेशकश आंधी फिल्म से. फरमाइश है आप सबकी

गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा, हसन, बाबू, मिफ्रा, बेबी चाहत। अमरगढ़ से सुखवीर। सदर बाज़ार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। अनारकली बाज़ार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा, अंजुमन खान। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज, वीरक। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, सक्रांति चौहान, उत्कर्ष। हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारीक, भूपेंद्र पारीक, जगत मडावरा, राजू मडावरा। शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, हिमानी जाखड़। वीरम गांव से अजीत भवसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार, राकेश भावसार। बनवाला हनुमंता फाजिलका से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माँ विद्या देवी और पूरा मायल परिवार। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह, मीता। और ये फरमाइश हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और किरण ठाकुर की। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आप ही की फरमाइश पर आंधी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, कुमकुम, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी, राजकोट से जैमिन जैन, हेतल जैन, कृष्णा जैन, कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, नई बस्ती गंज डिंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी, ये फरमाइश हमें मिली है बेनीपट्टी मधुबनी से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश कुमार, नियति कुमारी, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, और ये संदेश हमें मिला है पुखराज बड़गुजर का नोखा राजस्थान से, इनके साथ हैं कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, तृप्ति, दुर्गेश्वरी जायसवाल, और वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं आप ही की फरमाइश पर मनहर उदास और लता मंगेशकर का गाया अभिमान फिल्म का ये गीत।

पिंगा वाला चौक गोराया से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत मक्कड़। सिरसिला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक और पूरा सोनगरा परिवार। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, पिंकी सानी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, निप्पी सहानी, सुनीता सहानी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान, पूजा परिहार। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, सत्यम आनंद। खारिया हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। अमरगढ़ सादुलशहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, राज सिंह, प्रीत मान। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी। बहलोन नगर से नितेंद्र झोरड़, भीमसेन, लोकेश झोरड़, गौरव, पुनीता, बेबी आरवी झोरड़। खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा, ध्रुवी, फाल्गुनी जोशी। एटा रोड गंज डुंडवारा से बीपी गौतम, सरिता गौतम।

चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल नाचानी, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, किशोर धनाडे, चक सात डीबीएन भादुवाली ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी सत्यप्रिय, जय सिंह चारण, योगेश्री, रंजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगाणिया, हरनेक सिंह भगाणिया और कुछ पत्र श्रोताओं के हमें जो मिले हैं, आप हैं श्री गंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा, यहीं से रामेश्वर लाल सारस्वत, गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत, मंडी गोलूवाला से नीरज कुमार चौहान, ब्रिजलाल चौहान, अबोहर पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल, अमन, कर्ण, महेंद्र विश्नोई, मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया, आप सभी को हम सुनवा रहे हैं प्रोग्राम के आखिर में रफू चक्कर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की। प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप सुनिए और इस प्रोग्राम से सुमन को दीजिए अनुमति।

श्रोता अभी अपने कार्यक्रम सुना अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत, 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय रहेगा इस माह के कृषि कार्य। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिली किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज इसमें चर्चा के विषय होंगे सावन में हरियाली का महत्व, एआई का बढ़ता प्रभाव, मॉनसून के लिए इफेक्टिव फेस पैक और झटपट स्नैक्स। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी। शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी।

शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण व 6:05 पर सिराई के प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:30 पर कार्यक्रम चौपाल आप सुन पाएंगे। विषय रहेंगे बरसात के पानी का सदुपयोग, मानसून में पशुओं की देखभाल, नरमे की फसल में खरपतवार नियंत्रण और साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे इस सप्ताह संसद में कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत आप सुन सकते हैं और 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा। ये था कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन का नमस्कार। साथियों, कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जब तक उम्मीद जिंदा रहती है इंसान किसी भी हालात का सामना कर लेता है। उम्मीद अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह होती है। न जाने कौन सी दुनिया का वो पागल मुसाफिर था, न जाने कौन सी दुनिया का वो पागल मुसाफिर था, कभी हंसता नजर आया, कभी रोता नजर आया।

साथियों, मोहब्बत एक ऐसी शय है जो ज़िंदगी को बदल देती है। हमारे आसपास का माहौल भी हमें मोहब्बत में डूबा नज़र आता है। हर आहट में किसी का इंतज़ार होता है। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे है ज़िंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। साथियों, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बयां नहीं किए जा सकते। इंसान वही है जो तकलीफ में भी जीवन को जिए, क्योंकि एक इंसान से अनेक लोगों की खुशियां भी जुड़ी होती हैं। पेड़ के पंख लिए उड़ती फिरूं, पेड़ के पंख लिए उड़ती फिरूं, जिसने तोड़ा उससे ही जुड़ती फिरूं। हर राह पे खौफ तेरा, हर राह पे खौफ तेरा, हर राह से मुड़ती फिरूं।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। साथियों, मान और अभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों को आहत नहीं करता, लेकिन इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं अपने सम्मान की परवाह भी करता है। इसी संदर्भ में अगर दोस्ती की बात करें, मित्रता की बात करें, तो दो दोस्तों के बीच अगर दूरी बनती है तो इसकी वजह अभिमान नहीं, स्वाभिमान होता है। और जब ऐसा हो जाता है तो बात गीत के रूप में यूं निकलती है।

श्रोताओं, कहा गया है कि रूह बदन की जीनत है क्या, इतनी पाक मोहब्बत है क्या। मरकर जन्नत मांगने वालों, अलग जमीन से जन्नत है क्या। रूह पे मेरी कब्जा कर ले, किसी में इतनी चाहत है क्या।

कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने कतील शिफाई का कलाम सुना, और आइए इसी आवाज़ को सुनते हैं इस अगली गज़ल के ज़रिए।

मौत अगरचे मौत है, मौत से जिस्त कम नहीं, ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आँख नम नहीं। अभी आपने चित्रा सिंह की आवाज़ में फिराक गोरखपुरी का कलाम सुना, और लीजिए अब सुदर्शन फाकिर की ये गज़ल सुनिए आवाज़ जगजीत सिंह।

0: श्रोता, अभी आपने सुगम संगीत सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम खेत खलिहान में आज चर्चा का विषय है इस माह के कृषि कार्य।
2: कार्यक्रम सुनिया सगले परिवार ने भाई राजन का खना खना राम राम, मोकला मोकला राम राम सा। भाई लोगों, आपा सगला की खेती खड़ मिणख हाँ और आपकी जी की खेती है बिंगमा अच्छ उत्पादन लेन खातर, अच्छी सफलता लेन खातर आपा के कई बार खेती में भांत भांत का जी का प्रयोग है वह करता रहा। कदे कदे आपा ने बाऊँ फायदों देखने मिले तो कदे कदे नुकसान भी आपा ने उठानो पड़े हैं। पर जरूरी बात के है भाई लोगों का आपा बदलाव ने समझा और बिने स्वीकार कर गए बिंग सागे आगे बढ़ा। तो ई मिने आपने किसान भाई के है कुछ जरूरी काम धंधा है जिका आपकी खेती का माँ करना है, बाकी थोड़ी आपा चर्चा कर लेवा। जी हाँ, फसल उत्पादन में बात करें आपा तो खरीफ की फसलों की अच्छी बढ़वार खातर खरपतवार ने निकालन खातर आपने किसान भाई निराई गुड़ाई कर लेवा है, जिका उनके खरपतवार तो नष्ट हुआ ही हुआ है सागम माटी में भी हवा को संचार अच्छी तरीके में हुआ है। इनके अलावा आपा देखा तो जब माटी की आपा ऊपरी सतह या ऊपरी पपड़ी जब हटा देवा तो बिंग बाद के नमी को संरक्षण हुआ और कदे कदे देखा बिरखा को अभाव हुआ तो भी मैं गुड़ाई वरदानु कम को नहीं हुआ। गुड़ाई के बाद आपा देखा जब नमी पर्याप्त हुए या बिरखा हो जाए या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुए तो अनाज हाड़ी और तिलन हाड़ी जिकी भी खड़ी फसलें हैं भी मैं आपा यूरिया को छिंटो देश का हाँ। ई टाइम पर वातावरण में नमी और तापमान भी के ज़्यादा रहे और उमस के वातावरण में जिका रस चूटन हाला कीट हुए पंगु प्रकोप भी ज़्यादा हो जाए। ए कीट आप तो फसल ने नुकसान पहुँचावे है, सागे सागे फसल में के है जीवाणु जनित जिका रोग है पंगु भी कारण बने। इनके खातर आगे प्रभावी रोकथाम है वह बहुत जरूरी है। आंगी अच्छी रोकथाम खातर आपने किसान भाई नीम आधारित जिका कीटनाशक है बांगो प्रयोग कर सके है और ए व्याधियाँ पर काफ़ी प्रभावी है। जी बात करें आपा निम्बीडीन 0.3% दवाई है, इन्हें आपा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का माँ घोल बना के छिड़काव कर सका हाँ। इनके अलावा मिथाइल डिमेटोन 25 EC, डाईमिथोइट 30 EC या एसीफेट 75 WP की 15 मिलीलीटर मात्रा आपा प्रयोग में ले सका हाँ। और इमिडाक्लोप्रिड 17.5% SL की 5 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर पानी की एक टंकी में घोल के सागे बना के छिड़काव कर देवा। ध्यान रखा आपा एक टाइम में आऊँ कोई भी एक कीटनाशक को आपा प्रयोग करा, सब को एक साथ प्रयोग आपा ना करा। इमिजिथा पर 10% SL 75 ग्राम दवाई प्रति हेक्टेयर में

सोयाबीन की बीजांत के साथ 15-20 दिन बाद छिड़काव कर सका हाँ और खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल कर सका हाँ। सोयाबीन की फसल में घास आड़ी जी की भी खरपतवार है वह में नियंत्रण खातर क्विजालफोप एथिल 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवाई 5% ईसी को आपा बीजांत के लगभग 15-20 दिन बाद छिड़काव कर देवा। सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती आड़ी जी की खरपतवार है बांगा नियंत्रण खातर क्लोरीम्यूरान इथाइल 25% WP 9.37 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक आपा प्रयोग में ले सका हाँ। या क्लाबेन 25% WP की 37.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर पर आपा बीजांत के 10-15 दिन बाद प्रयोग में ले सका हाँ। इनके सागे सागे सर्फेक्टेंट जी को चिपकन आड़ो पदार्थ है बिंगे सागे भी आपा छिड़काव कर सका हाँ। बाजरा ज्वार मक्का आमे फड़का या सैन्य कीट है जिको बांगू प्रकोप होने पर आपा मिथाइल पैराथियन 2% या क्यूनालफोस 1.5% को 25 किलो धूड़ो प्रति हेक्टेयर की दरों आपके खेत में छिंटो देते वहाँ। मूंग चवड़ा और मोठ की फसल में फली छेदक जी की लट है बिंगो प्रकोप दिखाई देने पर अपने किसान भाई मोनोक्रोटोफोस 36 WC या क्यूनालफोस 25 EC को 1 लीटर मात्रा में या कार्बेरिल 50% जिको घुलन आड़ो चूर्ण हुआ है वो 2.5 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दरों फूल और फली आता टाइम छिड़काव कर सके हैं। मूंग मोठ और चवड़ा की फसल में पीत शीरा मोजिक जिको विषाणु रोग है बिंगो प्रकाय दिखाई देने पर आपने डाईमिथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दरों छिड़काव कर देना चाहिए। बागबानी में बात करें तो अनार की फसल में जब अनार की तितली को प्रकोप आपने दिखाई देवे तो बी टाइम पर जब फूल और फल बनने लाग जाए कार्बेरिल 50 WP 3 ग्राम को प्रति लीटर पानी के मां घोल बनाकर आप छिड़काव कर सका हाँ। और ई प्रकोप के फल जिका है वह धीरे धीरे सड़ गए गिरन लाग जाए तो जब आप वो छिड़काव कर देवांगा तो फलों को भी बचाव होगा। नींबू के पौधा पर नींबू की तितली को जब आपने प्रकोप दिखाई देवे तो बिंगे नियंत्रण खातर क्यूनलफोस EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना गए आपा छिड़काव कर देवा। आंवला के बूंटा पर भाई लोगों बोरेक्स 0.4% और जिंक सल्फेट 0.2% को आपा छिड़काव जरूर जरूर करा। बेर के पौधा में सितंबर महीना में धीरे धीरे के फूल खिलना शुरू हो जावे हैं। परागण खातर के जिकी भी माखियां हैं वे बगीचा में भ्रमण करने लाग जाए तो ई टाइम पर कीटनाशी जिकी भी दवाइयां हैं बाहु छिड़काव आपा ना करा। पपीता के पौधा में यूरिया लगभग 25 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब दे देवा टाइम पर निराई गुड़ाई करता रहा। सब्जियां में बात करें तो आपा टमाटर बैंगन मिर्च प्याज गोभी आ सब्जी जिकी पौध रोपाई है वह भी ई टाइम पर ही करी जानी है। इंगे खातर 6 इंच बड़ी स्वस्थ पौध को आपा चयन करा। पौध रोग रहित होनी चाहिए इस बात को आपा विशेष ध्यान रखा। पत्तियां की जिकी नसा है वे जे फुलड़ी हो तो आपा मान सका कि कोई भी वायरस संक्रमित हो सके है तो इंगे खातर आगे रोपाई आपा ना करा। कोई भी पौध है बिना रोपाई हूँ पहले आपा ट्राइकोडर्मा को टीको जरूर लगा देवा। 5 लीटर पानी में 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा घोला और ई घोल में पौध की जड़ा ने आधा घंटा तक आपा डुबो के रखा और इंग बाद आपा खेत का मां रुपाई करा। फूल गोभी की जिकी भी पछेती किस्मा है जियाँ पूसा स्नोबेल है K1 है हिसार 1 सेलेक्शन 7 आ सब की आपा बीजांत कर सका हाँ। और आंगी बीज दर आपा लगभग 375-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक रख लेवा। पत्ता गोभी की जिकी पूसा ड्रम हेड संकर हाइब्रिड 10 ए किस्मा है आंगे आपा ई टाइम पर नर्सरी में बीजांत कर सका हाँ। आंगी बीज दर लगभग 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक रखा। और अगेती किस्मा की जिकी भी तैयार पौध है भाई लोगों बिना खेत में आपा 45x45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करा। गाजर की जिकी भी देसी किस्मा है जियाँ पूसा केसर है बिंग बीजांत को एकदम सही समय है। इनके बीज दर लगभग 5-6 किलो आपा प्रति हेक्टेयर तक रखा और कतारों कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर और बूंटा बूंटा की दूरी 8-10 सेंटीमीटर तक आपा रख लेवा। मूली की जिकी पूसा रश्मि किस्म है बिंग बीजांत भी आप आपा कर सका हाँ। इनकी बीज दर लगभग 10-12 किलो प्रति हेक्टेयर तक रखा और कतारा के बीच में लगभग 30 सेंटीमीटर और बूंटा के बीच में 8-10 सेंटीमीटर की दूरी आपा बना के रखा।

0: पुष्प उत्पादन की आपा बात करा तो बरसात के मौसम में गेंदा, जीनिया, बालसम जी का फूल होए आंगी पौध की आपा देखभाल करा और तैयार पौध की रुपाई को भी काम है जी को शुरू कर देवा। गुलाब में जरूरत के हिसाब वहाँ पर निराई गुड़ाई करा और स्केल कीट के नियंत्रण खातर आपा मिथाइल डिमेटोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बना के छिड़काव कर देवा। रजनीगंधा में पोषक तत्वों का मिश्रण को 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करा और स्पाइक की कटाई करा। आज सगली बातों को आपने किसान भाई ध्यान रखे और फिर भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप आपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर कृषि वैज्ञानिकों को संपर्क कर सका। तो आज खातर ही तो ही भाई लोगों, अब भाई ना आज्ञा दो, राम राम सा राम राम।
1: इस माह के कृषि कार्य कार्यक्रम खेत खलिहान में अभी आपने इस विषय पर यह जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिटी किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत में मध्यस्थता की परंपरा सदियों पुरानी है और यही हमारी संस्कृति तथा इतिहास का अभिन्न हिस्सा रही है। ये बात उन्होंने आज जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य व्याख्यान में कही। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें शासन के चार सिद्धांत साम, दाम, दंड और भेद बताए गए हैं, जिनमें साम यानी संवाद और समझाइश को पहली प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत आज की मध्यस्थता व्यवहार का आधार है और विधि के शासन को प्रभावी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना है। ये बात उन्होंने आज बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के 40वें स्थापना दिवस समारोह और डॉ के एन नाग स्मृति व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने विद्यार्थियों से यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय में इंडिया एआई मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से कृषि आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। समारोह में राज्यपाल ने श्री मेघवाल को विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस प्रदान की। शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और समुचित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विश्व स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इस वर्ष सप्ताह की थीम जीवन की सतत और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान जो प्रभावी भी है और उसे सशक्त बनाए रखी गई है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा के संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान में राजस्थान का योगदान सबसे अधिक है। उपमुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और समर्पित प्रयासों को दिया। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय और ज्ञान भारतम मिशन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही पांडुलिपि संरक्षकों, मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों, शोध संस्थानों और स्वयं सेवकों के सहयोग की सराहना की। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं।

0: इस फैसले से रेस्टोरेंट ढाबे होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से कहीं-कहीं तेज तो कहीं-कहीं हल्की बरसात का सिलसिला बना हुआ है राजधानी जयपुर में आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गरज और झोंकेदार हवाओं के साथ बरसात हुई सबसे अधिक 60 मिलीमीटर बरसात डूंगरपुर के वेजा में दर्ज हुई मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून दक्षिणी राजस्थान के भागों से होकर गुजर रहा है इसके असर से आज और कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज तो कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश होने की संभावना है वहीं जयपुर अजमेर और बीकानेर संभाग में भी बरसात के आसार हैं आज सिरोही और जालौर में बारिश का येलो अलर्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है पीएमआरबीपी के लिए 1 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
1: मीडियावेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं 1:05 हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत

कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं को मंजू शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो प्रकृति, संस्कृति और हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है सावन का, सावन की हरियाली का, और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। सावन का नाम आते ही मन में घने बादल, रिमझिम बारिश, झूमते पेड़, महकती मिट्टी और चारों ओर फैली हरियाली की मनमोहक तस्वीर उभर आती है। और मैंने ये केवल एक मौसम नहीं बल्कि प्रकृति के नवजीवन का उत्सव भी है। बारिश की पहली फुहार के साथ ही सूखी धरती हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है, खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती हैं, पेड़ों पर नई कोपलें निकलती हैं और वातावरण में ताजगी घुल जाती है। यही हरियाली हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है, हर कठिन समय के बाद नई शुरुआत संभव है। हरियाली केवल देखने में सुंदर नहीं होती बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, वर्षा चक्र को संतुलित रखते हैं और धरती के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हरियाली न रहे तो जीवन की कल्पना भी कठिन हो जाए। यही हरियाली हमारे अन्न भंडार भरती है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। भारतीय संस्कृति में भी सावन और हरियाली का विशेष स्थान है। इस महीने में हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे अनेक पर्व मनाए जाते हैं। महिलाएं हरे रंग के कपड़े और लहरिया डिज़ाइन के कपड़े पहनती हैं और हाथों में हरी चूड़ियां सजाती हैं, मेहंदी रचाती हैं। ये हरियाली केवल प्रकृति की नहीं बल्कि खुशहाली, समृद्धि और नए जीवन की प्रतीक भी मानी जाती हैं।

मैनो बात हो रही थी सावन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सावन के महीने में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं। बच्चे और महिलाएं लोकगीतों के साथ झूला झूलते हैं। सावन के झूले भारतीय लोक संस्कृति की एक सुंदर पहचान है। सावन की हरियाली हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि यदि हमें भविष्य सुरक्षित रखना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और उनकी देखभाल भी करनी होगी। बच्चों में भी प्रकृति के प्रति प्रेम जगाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि बचपन से ही उन्हें पेड़ पौधों का महत्व समझाया जाए तो वे बड़े होकर पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी बन सकते हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, प्रकृति भ्रमण और पर्यावरण संबंधी गतिविधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। बहनों, हरियाली केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शोध बताते हैं कि हरियाली के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की ऊर्जा बढ़ती है। यही कारण है कि पार्क, बगीचे और प्राकृतिक स्थान लोगों को सुकून प्रदान करते हैं। तो आइए इस सावन हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर, आंगन, खेत, विद्यालय या आसपास की खाली जगह में कम से कम एक पौधा आवश्यक रूप से लगाएं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हमारा देश फिर से हरा भरा बन सकता है।

बहनों, अब बात करते हैं एआई की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आज एआई हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनता जा रहा है जिसके बिना भविष्य की कल्पना करना कठिन लगता है। कुछ वर्ष पहले तक एआई केवल विज्ञान और फिल्मों का विषय माना जाता था, लेकिन आज यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज यदि हम अपने मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय अपनी पसंद के अनुसार सुझाव पाते हैं, किसी भाषा का तुरंत अनुवाद कर लेते हैं, या इंटरनेट पर कोई जानकारी कुछ ही सेकंड में खोज लेते हैं, तो समझिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एआई काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई ने नई संभावनाएं खोली हैं। अब विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार पढ़ सकते हैं, कठिन विषयों को सरल भाषा में समझ सकते हैं और अभ्यास के लिए व्यक्तिगत सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। इससे सीखना अधिक रोचक और प्रभावी बन रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में एआई डॉक्टरों की सहायता कर रहा है। कई मामलों में यह एक्सरे, एमआरआई और अन्य मेडिकल रिपोर्ट्स का विश्लेषण तेजी से कर सकता है, जिससे रोगों की पहचान में मदद मिलती है। कृषि क्षेत्र में भी एआई किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। मौसम का अनुमान, मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण, फसलों में रोगों की पहचान और सिंचाई की बेहतर योजना, किसी जैसे कई सुविधाएं किसानों तक पहुंच रही हैं। इससे उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने में सहायता मिल रही है। इसी तरह उद्योगों और कार्यालयों में भी एआई ने काम करने का तरीका बदल दिया है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैनू गीत से पहले हम बात कर रहे थे एआई की। हर तकनीक की तरह एआई के भी कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू हैं। इससे गलत जानकारी का प्रसार हो सकता है। एआई की मदद से नकली तस्वीरें, वीडियो और आवाज़ें तैयार की जा सकती हैं। इसलिए किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना बहुत ज़रूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग जिम्मेदारी, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों के साथ किया जाए तो ये समाज के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बहनों, हमें एआई से डरने की नहीं, बल्कि उससे समझने और सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। नई तकनीकों को सीखना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और अपनी रचनात्मकता को विकसित करना ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत होगी। आने वाले वर्षों में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और शासन व्यवस्थित सहित अनेक क्षेत्रों में और

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों, मानसून के मौसम में नमी बढ़ने से त्वचा ऑयली, चिपचिपी और मुहांसों की समस्या का सामना कर सकती है। ऐसे में प्राकृतिक फेस पैक त्वचा को साफ, ताज़ा और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। पहला है बेसन और दही का फेस पैक। इसे 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी मिलाकर 15-20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह चेहरे से अतिरिक्त तेल हटाने और त्वचा को निखारने में मदद करता है। दूसरा फेस पैक बना सकते हैं। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लें और आवश्यकता अनुसार उसमें गुलाब जल डालकर इस पेस्ट को 15-20 मिनट तक फेस पर लगाएं। ऑयली स्किन के लिए प्रभावी होता है। और इसके अलावा बहनों, 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा जेल में 2 चम्मच खीरे का रस मिलाकर 15 मिनट तक चेहरे पर लगा लें और फिर चेहरा धो लें। चेहरे को ठंडक और नमी देता है। इसी तरह ओट्स और शहद को भी आप 2:1 में मिलाकर उसमें थोड़ा सा दूध या गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे चेहरे की त्वचा मुलायम होती है। तो इनमें से कोई सा भी फेस पैक आप बनाकर अपनी त्वचा के अनुसार लगा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे कुछ घरेलू फेस पैक्स पर। अब बात करते हैं कि जितना फेस पैक लगाना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है फेस पैक के बाद चेहरे की त्वचा की देखभाल करना। सबसे पहले किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ़ कर लें। दूसरा, किसी भी फेस पैक का उपयोग सप्ताह में एक या दो बार ही करें। रोज़ फेस पैक लगाने से त्वचा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। यदि आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो किसी भी नए फेस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले हाथ के अंदरूनी हिस्से पर पैच टेस्ट अवश्य कर लें। इससे किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना का पता चल जाएगा। और एक और बात बहनों, मॉनसून में केवल फेस पैक लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, संतुलित भोजन करना, मौसमी फल खाना और अच्छी नींद लेना भी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाएं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें और चेहरे को ढककर ही बाहर निकलें। तो बहनों, इस मॉनसून अब आप भी रासायनिक उत्पादों की बजाय घर पर बने फेस पैक का उपयोग करके अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

बहनों, अब बात करते हैं कुछ झटपट बनने वाले स्नैक्स की। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी के पास समय की कमी है। कई बार अचानक मेहमान आ जाते हैं, कभी बच्चों को स्कूल से लौटते ही भूख लग जाती है, या शाम की चाय के साथ कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करता है। ऐसे समय में अगर गैस जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े और कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट स्नैक्स तैयार हो जाएं, तो बात ही क्या है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक स्नैक्स जिन्हें बिना गैस के कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने बात करते हैं वेजिटेबल सैंडविच की। ब्रेड के स्लाइस लें, उन पर हरी चटनी, टमाटो सॉस या मेयोनीज लगाएं। अब उसमें खीरा, टमाटर, प्याज और अगर उबाल कर रखे आलू पड़े हैं उनके पतले स्लाइसेस, और स्वीट कॉर्न रखें। ऊपर से थोड़ा नमक, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला छिड़कें। इस पर दूसरा ब्रेड रखकर, स्लाइस रखकर हल्का दबाएं। चाहें तो तवे पर हल्का सा सेक भी सकते हैं। लीजिए, स्वादिष्ट और हेल्दी सैंडविच तैयार है। अब बात करते हैं भेल पूरी की। तो एक बड़े बर्तन में मुरमुरे, बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस और इमली की मीठी चटनी मिला लें। ऊपर से सेव डालें और इनको अच्छे से मिलाकर तुरंत परोस दें। यह स्नैक बच्चों, बड़ों, सभी को बहुत पसंद आता है। आप बनाकर देखिए। और बहनों, तीसरा स्वादिष्ट विकल्प है फ्रूट चाट। अपनी पसंद के मौसमी फल जैसे सेब, केला, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार के दाने एक बॉल में डालें। ऊपर से काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर मिलाएं। यह बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक का ऑप्शन है। बहनों, गर्मी का मौसम है तो हमें चाहिए होता है कुछ तरोताज़ा करने वाला स्नैक। तो इसका ऑप्शन है दही चाट। तो इसे बनाने के लिए ताज़ा और फेंटा हुआ दही लें। उसमें बारीक कटा प्याज, खीरा, टमाटर, हरा धनिया, काला नमक, भुना पिसा जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डालें। और इसमें थोड़ी मिठास लाने के लिए अनार के दाने डाले जा सकते हैं। यह स्नैक गर्मी और उमस दोनों से राहत और ताजगी प्रदान करता है। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं. 12 ईयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे
0: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जिनकी नींव रखी गई है वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं
0: आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू प्रेज्ड प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप फॉर हेल्पिंग रीबिल्ड आंध्र प्रदेश एंड ट्रांसफॉर्म नॉर्थ आंध्रा He said the inauguration of the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram was a historic milestone that would bring investment, industries, jobs and new opportunities to the region. Indian Railways has approved the multi-tracking of the 29-kilometre Danapur to Fatuha section of East

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और

211,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 183,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 144,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में

0: हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई, इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितम्बर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और चालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और

0: केंद्र जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माही में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना गोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक दो दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म थी जीवन मृत्यु। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत राजा मेहदी अली खां का, संगीत मदन मोहन का और फिल्म का नाम है मेरा साया।

शर्मीली फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था नीरज ने और धुन तैयार की थी एस डी बर्मन ने। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश बरसात की रात फिल्म से आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीत साहिर का और संगीत रोशन का।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत आर डी बर्मन का और फिल्म का नाम था अजनबी। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। लीजिए शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए, जिसका संगीत एस डी बर्मन ने तैयार किया है, आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने और फिल्म का नाम है काला बाजार।

कश्मीर की कली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थीं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। और श्रोताओं, प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं इन्हीं आवाज़ों में मजरू का लिखा गीत, संगीत एस डी बर्मन का, और फिल्म का नाम है बम्बई का बाबू।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, 3 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

सामिन आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मीना कुमारी की शख्सियत और फन के हवाले से एक खसूस फीचर अजीब दास्तां है ये। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामिन ये था मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले इन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुर में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तिजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशेबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और उनका इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी किया। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिनमें सड़कें और तवानाई की यकीनी फराहमी शामिल है, जिससे आंध्र प्रदेश की तेज तरक्की में मदद मिलेगी। नए हवाई अड्डे की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये एक फख्र की बात है कि यह हवाई अड्डा अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है और इस हवाई अड्डे का इफ्तिताह ऐसी सरजमीन पर किया गया है जहां मुजाहिद आज़ादी ने कबायली तबकों के हकूक के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश खुसूसन शुमाली आंध्रा की तरक्की के लिए मददगार साबित होगा और रियासत के नौजवानों के लिए रोशन मुस्तकबिल और ज्यादा मौके के लिए लॉन्च पैड के तौर पर काम करेगा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के केलम इलाके में कल शाम दहशतगर्दाना हमले के दौरान जो दूसरा मजदूर जख्मी हुआ था वो भी आज सुबह जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 2 हो गई है। पुलिस के एक सीनियर अहलकार ने बताया कि श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान जख्मी मजदूर की मौत हो गई। दोनों मजदूरों पर कल शाम नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी जो ईंटों के एक भट्टे पर काम कर रहे थे। इस वाकई के फौरन बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और दहशतगर्दों को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हलाकत की सख्त मजम्मत की है और मारे गए मजदूरों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वे इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके में अपनी कार्रवाई और तेज कर दें। जनाब अब्दुल्ला ने मरने वाले मजदूरों के कुनबों के लिए वजीर आला के राहती फंड से 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलगाम जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी तौर पर 6 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में चतरू इलाके में आज सुबह सवेरे बादल फटने की वजह से आए अचानक सैलाब से बहुत से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि लगातार बारिश से चेनाब वादी में आम जिंदगी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हुक्काम ने किश्तवाड़ डोडा और रामबन जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वह ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करें। अचानक सैलाब से जो देर रात 2:30 पर आया किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में वसी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अचानक सैलाब से बड़ी मार्केट में पानी भर गया और किश्तवाड़ चतरू सिंथन कौमी शाहराह बंद कर दी गई। मरकजी वजीर जितन सिंह ने बादल फटने की इत्तला मिलने के फौरन बाद किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा से फोन पर बातचीत की है। भारत और चीन के दरमियान आज से सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू हो गई है, जिससे दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम तजारती रास्ते की बहाली होगी। तजारत की बहाली से 6 साल तातुल खत्म हो जाएगा जो 2020 से कोरोना वायरस वबा की वजह से पैदा हुआ था। तवक्को है कि तजारत की बहाली से सरहद पार तजारत को फरोग मिलेगा, जिससे रजिस्टर्ड ताजरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और मुतालका कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। नाथुले के जरिए तजारत 4 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुअत्तल रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुई थी।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, जिससे दरिया से मुतासिल नशीबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई की है, जिसके बाद इंतजामिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महानदी दरिया में मुसलसल पानी बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खरौदा जिलों के नशीबी इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा बढ़ गया है। वजीर आला ने भद्रक, बालासोर, जाजपुर और केवंझर के सैलाब से मुतासर जिलों का भी फजाई सर्वे किया, ताकि मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं और गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौजों की जानिब से अंधाधुंध गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहरों के दौरान 50 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी की मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन अमवात के लिए जिम्मेदार हैं। एक बयान में अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक मुजाहरे होते रहे, सड़कों पर लोगों ने अपने बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ और मकामी हुक्काम की जानिब से किए गए वादों को नाफिज करने का मुतालबा किया। इसी दौरान अमरीका में इंसानी हकूक की तंजीम HRF ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में गैर मुसल्ह मुजाहरीन के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ताकत के मुबैना इस्तेमाल की मजम्मत की है। तंजीम ने पाकिस्तानी हुक्काम से मुतालबा किया है कि वह गिरफ्तारियां बंद करे, मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करे और गैर कानूनी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाए। एक मकामी सिविल सोसाइटी ग्रुप का हवाला देते हुए HRF ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मुजाहरों के दौरान हजारों पुरअमन मुजाहरीन पर फायरिंग की। यूक्रेन की राजधानी कीफ में रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। रूस ने यह हमले निस्फ में किए थे। यूक्रेन की सरकारी इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक सोलोमियांस्की जिले में हमले से 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरकर तबाह हो गई, बाद में उसमें आग भी लग गई। राहती टीमों ने ऊपर की मंजिलों से 35 लोगों को बहिफाजत निकाल लिया। इस जिले में 2 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हुए हैं, जबकि राजधानी कीव के डारनिस्की जिले में 7 अफराद मारे गए और 14 दीगर जख्मी हुए, जबकि हमले से आग लग गई और रिहायशी इमारतों, गाड़ियों, इंतजामी दफातर और दीगर गैर रिहायशी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के नायब सदर JD वैंस से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और वाशिंगटन में इस हफ्ते के शुरू में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने सदर ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग को मुस्बत और समरावर करार दिया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल करने के बाद खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई। 17 साल तन्वी ने चीनी ताइपे के खिलाड़ी हॉन्ग योन सुन को सीधे सेटों में 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। अब फाइनल में तन्वी का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थोई लिन गोइन से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड अल्लूरी सीताराम राजू बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। महानदी दरिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से नशीबी इलाकों में मजीद सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाइन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुर

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मेरी अपनी फिल्म में नगमा, मौसीकार थे सलील चौधरी। मीना कुमारी की अदाकारी से सजी एक और फिल्म का तस्करा किया जाए, वो फिल्म थी साहेब बीबी और गुलाम, जो जितनी कल मकबूल थी उतनी ही आज भी मकबूल है। उसी फिल्म का नगमा समाप्त फरमाइए गीता दत्त की आवाज में, मौसीकार हैं हेमंत कुमार।

0: है।
1: ये नाम आप सुन रहे थे आजाद फिल्म का। इस फिल्म में मीना कुमारी के ऑपोजिट थी दिलीप कुमार। इस नगमे में आवाज दी थी लता मंगेशकर और चितलकर ने। नगमान गया थे राजेंद्र किशन और मौसीकार सी रामचंद्र। और एक और खूबसूरत नगमा मीना कुमारी जी की अदाकारी से सजा, जिसमें किशोर कुमार उनके हीरो थे और नगमे में आवाज भी किशोर कुमार के साथ है, शमशाद बेगम की। मौसीकार है वो भी नैयर।

सामिन इसनक के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। आज के प्रोग्राम खराज अकीदत था अपने ज़माने की मारूफ अदाकारा मीना कुमारी के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीना कुमारी की शख्सियत और फन के हवाले से अब समाज फरमाइए। ये फीचर अजीब दास्तां है ये।

0: दास्तानें कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से नजदीक होती हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि जिंदगी दास्तानों से करीब तर नजर आती है। इसी तरह ये दास्तान पेश करती है एक ऐसी शख्सियत की कहानी जिसकी पूरी जिंदगी एक अजीब दास्तान से कम नहीं। अपनी संजीदा अदाकारी से नाजरीन के दिलों को छू लेने वाली अदाकारा मीना कुमारी अपने वक्त का एक मशहूर नाम जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं ट्रेजेडी क्वीन यानी मलका जज्बात के नाम से। मीना कुमारी को मलका जज्बात ऐसे ही नहीं कहा जाता बल्कि वो वाकई जब बोलती थी तो उनकी आवाज में इतना दर्द इतना कर्ब होता था कि नाजरीन अपनी सांसें थाम के बैठ जाते।
1: This is Meena Kumari is playing this role. You will feel that this character what she is playing, and she is to work so hard for it. उसको character को क्या है, उसकी body language क्या है, उसकी अदा क्या है, उसका सोच क्या है, उसका आँखों से कैसे perform करेगी, हाथ पांव से कैसे perform करेगी, किस style से बोलेगी, क्या-क्या characters हैं। दारुमनी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। If you see many films, she is so different. People should watch and find that what a performer. एक जैसी लगती नहीं है कहीं।
2: नाव को पतवार का सहारा होता है प्रकाश बाबू, उसके बिना डूब ही जाती है नाव। क्या करूं?
0: कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया के बहुत से ऐसे मारूफ अदाकार और अदाकाराएं थीं जो मीना कुमारी से बेइंतहा मुतासिर थीं। मधुबाला को मीना कुमारी का जबरदस्त फैन कहा जाता है। बकौल मधुबाला, मीना कुमारी जैसी आवाज किसी की भी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि राजकुमार जैसे मंझे हुए अदाकार मीना कुमारी के सामने कभी कभी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। सत्यजीत रे के मुताबिक मीना कुमारी जबरदस्त कैलिबर की अदाकारा थी। फिल्म इंडस्ट्री एक से एक अजीम अदाकारा को जन्म दे सकती है मगर मीना कुमारी का कोई नेमुल बदल नहीं है, ये कहना था मौसीकार नौशाद का। जबकि अमिताभ बच्चन का कहना है कि जिस तरह मीना कुमारी अपने मकाल में अदा करती थी इस तरह न कोई कर सका है और न ही कोई कर सकता है।

0: हुआ है, मैं इंसाफ चाहती हूँ शहनशाह।
1: कौन है ये पागल लड़की, बाहर निकाल दो इस मनुष्य को।
0: नहीं आला हजरत नहीं, अगर रोमन कानून अमीर और गरीब के लिए एक है तो मेरी फरियाद सुनी जाए।
2: रोमन अदालत ने आज तक किसी फरियादी को नाउम्मीद नहीं किया लड़की, लेकिन इस मुबारक मौके पर दखल अंदाज होकर इंसाफ की फरियाद करने का क्या मकसद?
0: आला हजरत, इस मुबारक मौके के गुजर जाने के बाद इंसाफ की गुंजाइश रहेगी और ना कोई जरूरत।
1: इंसाफ? नादान लड़की, जुल्म के कारखाने से इंसाफ की उम्मीद? जहरीले सांप जहर के सिवा कुछ नहीं उगला करते। चल बेटी घर चले, इंसाफ मिल चुका, रोम कानून शुरू हो चुका। खामोश बदजबान यहूदी, ऐसे मुबारक दिन हमारे खैर गजब को न ललका। इंसाफ मांगना है तो इस बारगाह शहनशाही में अदब से काम ले। यहूदन, तेरी फरियाद बेमौका और बेमहल है, मगर हम सुनेंगे। इंसाफ होगा और इसी वक्त होगा।
3: लेकिन आला हजरत,
1: ये हमारा हुक्म है। बोल, क्या है तेरी फरियाद?
0: क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या वक़्त है जो एक लड़की को मोहब्बत के झूठे ख्वाब दिखाकर उससे आंखें फेर ले? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि रोमन कानून की नजर में उस शख्स की क्या हैसियत है जो एक लड़की से शादी का वादा करके उसे रुसवाई और बदनामी के गार में धकेल दे और खुद दूसरी लड़की से शादी करने पर आमादा हो जाए?
2: रोमन कानून की नजर में ऐसा शख्स यकीनन मुजरिम है और इंसाफ की नजर में सजा का मुस्तहक। यहूदन, हम जानना चाहते हैं वो कौन फरेबी है जिसने तुझ पर ये जुल्म किया?
0: वली अहद सल्तनत, जिसे दुनिया शहजादा मार्कस कहती है।
4: मलका जज्बात के नाम से मशहूर मारूफ अदाकारा मीना कुमारी का असल नाम महजबीन बानो था, जो कि मुंबई के एक गरीब मुस्लिम घराने में पैदा हुई। मीना कुमारी के वालिद अली बख्श पंजाब से ताल्लुक रखते थे। मीना कुमारी के वालिदा इकबाल बानो ने इनका नाम महजबीन रखा था। कहा जाता है कि विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस से मीना कुमारी फिल्मों में आई और उस वक्त तकरीबन वो 7 बरस की थी और इस फिल्म में उनका नाम बीबी मीना रखा गया। अली बख्श और इकबाल बानो के घर जब मीना कुमारी का जन्म हुआ तो अली बख्श बहुत नाउम्मीद हुए, क्योंकि वो दौर बड़ी मुफलिसी का दौर था। पर ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना इस बच्ची को किसी यतीम खाने में छोड़ आए। अली बख्श जब उस बच्ची को यतीम खाने के बाहर छोड़कर आ रहे थे तब वो बहुत रोई और आखिरकार अली बख्श को उस बच्ची को वापस ले जाना पड़ा। यहीं से शुरू होती है अपने जमाने की नंबर वन हीरोइन मीना कुमारी की दर्द भरी दास्तान।
5: हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सोया की जिद ने हमें मजबूर कर दिया। एक ऐसा गुनाह किया हमने जिससे हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा।
0: मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है।
5: शुक्र है खुदा का, आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखते हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझते हैं।
0: आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें?
5: माफ कर दें, हमारा कौन

0: क्या तुम वही जीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत के आसमान पर बिठाना चाहा? क्या तुम वही जीनत हो जिसकी चौखट पर सर झुकाना हमने भाई से फख्र समझा? और आज आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन भाई के कोठे से लाई दी?
1: हाँ नवाब साहब, मैं वही जीनत हूँ। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया।
0: मगर ये सब हुआ कैसे? तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई?
1: मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई, नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पना दी, और उस वक्त पना दी जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी।
0: मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल रही? हमें बताओ जीनत, निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई?
1: निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कर।

0: मेरा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब। लेकिन हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। एक बिजली सी कौंधी और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीम बाई के कोठे पर थी।
1: मीरा कुमारी को फिल्मों के छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। उन्होंने मुतअद्दिद स्टंट फिल्मों में काम किया मगर पहचान न बना सकी। उसी जमाने में हिदायतकार विजय भट्ट एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसमें वो दिलीप साहब को लेना चाहते थे। जब दिलीप कुमार अवेलेबल नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे कम बजट की फिल्म में तब्दील कर दिया। ये वही विजय भट्ट थे जिन्होंने मीरा कुमारी को एज चाइल्ड आर्टिस्ट लेदर फेस में पहला मौका दिया था और उनका नाम बेबी मीना रखा था। मीना कुमारी भी विजय भट्ट के पास गई और भट्ट साहब ने उन्हें फिल्म में ले लिया।

0: ये किस्मत का खेल कि ये फिल्म एक ऐसी कामयाब फिल्म बनी जो कि आज तक लोगों को याद है, और फिल्म का नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा ने मीना कुमारी को कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंचाया जहां मीना कुमारी के लिए पहुंचना किसी ख्वाब की ताबीर से कम नहीं था, और मीना कुमारी को वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी।
1: अभी तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना, तुम्हें विधवा बनाना है।

बैजू बावरा ने न सिर्फ मीना कुमारी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया बल्कि इस फिल्म में मीना कुमारी को ऐसी शोहरत और पहचान दी जिसकी जगबगाहट से उस जमाने की नामवर अदाकाराएं फीकी पड़ जाया करती थी, जबकि वो भी अपने फन में यकता थी। मीना कुमारी की खूबी ये थी कि उनके अल्फाज, जबान और चेहरे से जो कर्व नुमाया होता था वो उस किरदार की सही माने में अक्कासी करता था। फिल्म बैजू बावरा के बाद अगले बरस मीना कुमारी को एक और बड़ी फिल्म मिली जिसके हिदायतकार थे बिमल रॉय। ये फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल पर मबनी थी और फिल्म का नाम था परिणीता।

क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ अचानक हुआ मीना कुमारी के साथ। कमाल अमरोही साहब जिन्होंने बॉम्बे टाकीज के लिए महल बनाई थी, वो एक और पिक्चर बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था अनारकली और कमाल अमरोही ने इसका स्क्रिप्ट भी मुकम्मल कर लिया था। उन्होंने अशोक कुमार से कहा कि क्यों ना इस फिल्म में मीना कुमारी को लिया जाए। अशोक कुमार जो बॉम्बे टाकीज के मालिक थे और उन पर पूरा भरोसा करते थे, उन्होंने इकरार कर लिया। कमाल अमरोही मीना कुमारी को साइन करने उनके घर गए। मीना कुमारी ने महल फिल्म देखी थी और वो उन्हें बहुत पसंद भी आई थी, इसलिए वो बेहद खुश हुई और मीना कुमारी इस फिल्म के लिए तैयार हो गई। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मीना कुमारी एक हादसे का शिकार हो गई और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। हादसे में हाथ इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया कि कुछ भी कहना मुश्किल था कि हाथ मुकम्मल तौर पर सही होगा भी या नहीं। फिर क्या था, धीरे धीरे मीना जी से फिल्में वापस ले जाने लगी। कहते हैं ना, परेशानी में साया भी साथ छोड़ जाता है।

मीना कुमारी की दो उंगलियां कट चुकी थी और वो अस्पताल में थी। ऐसे में एक साहब उनको जरूर देखने आया करते थे और वो थे कमाल अमरोही। मीना कुमारी पहले से ही कमाल साहब से काफी इंप्रेस थी। रफ्ता रफ्ता मीना कुमारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उन्होंने छुपकर कमाल अमरोही साहब से शादी कर ली। मीना कुमारी को फिर से फिल्में मिलना शुरू हो गई। जिया सरहदी की हिदायत में बनी फिल्म फुटपाथ दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की पहली फिल्म थी। इसके बाद एक और हिट फिल्म आई जिसके गाने भी बहुत मशहूर हुए और वो थी आजाद।

अमल मित्रा के एक नॉवेल पर मबनी एक फिल्म बनाई थी गुरुदत्त ने। उस फिल्म के हिदायतकार थे अबरार अलवी। फिल्म थी साहेब बीबी और गुलाम। ये फिल्म सुपरहिट हुई। फिल्म साहब बीबी और गुलाम में मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार इतनी अच्छी तरह निभाया था कि आज भी लोग छोटी बहू को याद करते हैं। फिल्म साहब बीबी और गुलाम को बेहतरीन अदाकारा समेत 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। यही नहीं, ये फिल्म बर्लिन बैन अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए नामजद भी हुई और मीना कुमारी को एक डेलीगेट की हैसियत से भी मुंतखब किया गया। साहब बीबी और गुलाम का इंतखाब ऑस्कर्स के लिए भी हिंदुस्तान की जानिब से एक ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किया गया। इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। नगमा निगार शकील और मौसीकार हेमंत कुमार थे।

मीना कुमारी ने एक दो नहीं बहुत सी हिट फिल्में दी। इन्हीं में से फनी मजुमदार की हिदायत में बनी फिल्म आरती थी, जिसका टाइटल रोल मीना कुमारी ने किया।

कुमारी की फिल्मों के नगमों की बात करें तो उनकी फिल्मों के काफी नगमे बेहद हिट हुए। इनमें से एक सुपरहिट फिल्म थी दिल एक मंदिर, जिसके हिदायतकार थे सी.वी. श्रीधर।

0: अमीना कुमारी अगर एक अदाकारा न होती तो यकीनन एक मारूफ शायरा जरूर होती। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने उनका मजमूआ कलाम भी छपाया। मीना कुमारी का कलमी नाम नास था।
1: अकेलेपन के उसे बेकनार सपने में पंछी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए फिर वही मैं वही चौराहा वही बेनाम सुकूत धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा फिर से एहसास न पहना है बेहिसी का लिबास सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी।

माजी, मेरा माजी मेरी तन्हाई का ये अंधा शिकाफ, ये के सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्ज की मानंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी सलाह उंगलियों से गहरा करते रहे करते गए, किसी की रूप पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जुस्तजू में रहा, कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाह मेरे हमशाह, मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन, तमाम जख्म जो तेरे हैं मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह का रिश्ता है मेरी आहों से, तू एक मस्जिद वीरान।

में तेरी अजां अजां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा जमीन के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे।

है, फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, क्षमा हूं फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। ये नूर कैसा है राख का सरंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गुंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर, ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, रुपहली छाँव में बदनामियों का डेरा है, ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी, दरो दीवार कहां रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलब लम्स का एक सफर तवील, हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत नहीं कह

0: मीना कुमारी ने अपनी कमोबेश 33 बरस के फिल्मी करियर में 92 फिल्में की, जिनमें से हमने खास खास फिल्मों का जिक्र भी किया, लेकिन मीना कुमारी की एक ऐसी भी फिल्म थी जिसका जिक्र किए बगैर मीना कुमारी की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक ऐसी फिल्म थी जो न सिर्फ मीना जी की कामयाब तरीन फिल्म है, बल्कि इस फिल्म के गानों के साथ साथ इसके मकाल में भी बहुत हिट हुए।
1: माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर।
0: ये फिल्म थी पाकीजा। पाकीजा को मुकम्मल होने में लगभग 14 बरस का अरसा लगा। पाकीजा कमाल अमरोही और मीना कुमारी दोनों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल।
1: इनका नाम पाकीजा है।

0: शादी हुई थी, मोहब्बत की शादी थी, इतने लव अफेयर, दोनों के दोनों और बहुत महान कलाकार थे, अपनी जगह पर कमाल अमरोही कमाल थे, अपनी जगह पर मैं जबीन मीना कुमारी साहिबा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन जब वो कमाल अमरोही साहब की जिंदगी में दाखिल हुई थी उस वक्त वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, बहुत कुछ एज अ पर्सन आई वुड से उन्होंने सीखा आफ्टर शी स्टेप्ड इनटू कमाल अमरोही की लाइफ माय फादर।
1: फिल्म पाकीज़ा 33 हफ्तों तक कामयाबी के साथ चली और उसने सिल्वर जुबली भी मनाई, लेकिन मीना कुमारी अपनी बीमारी के बायस अपने परस्तारों को उदास छोड़कर रुखसत हो गई और मालिक के हकीकी से जा मिली।
2: तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। उधर देखो, सारा आलम तुम्हारे कदमों पर झुका हुआ है और ये सब तुम्हें सलाम कर रही है।
3: लल्ला, चुप हो जाइए, इतने प्यार से मेरी जान मत लीजिए, मैं इकरार किए लेती हूँ, मुझे सब याद है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ?
2: कौन हो तुम? कौन हो?
3: मैं बेकसूर हूँ, आपने ये समझाया था, आप आए, आपने खत लिखा।

और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिए। हर रात आप मुझे पुकारते हुए गुजरते रहे, हर रोज मेरी रूह मेरे बदन से खींचती रही। दूर ही दूर मैं आपकी हसरत में डूब कर मर जाती, मगर आपने मुझे डूबने भी नहीं दिया। मैं भाग जाती लेकिन आपके खेमे ने मुझे घेर लिया। आप आ गए और आपके दिल की धड़कनों ने मुझे ये कहने भी नहीं दिया कि मैं कहां हूं।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे। अनुराधा पोडवाल की आवाज़ भी, नगमा निगार थे रानू मलिक, मौसीकार नदीम शर्वन। प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए फूल और कांटे फिल्म का नगमा।

मोहम्मद अजीज़ और एस जानकी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे आखिरी रास्ता फिल्म का नगमा, नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए, अब सुनिए एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में साजन फिल्म का नगमा, बोल समीर के हैं, मौसीकार हैं नदीम शाह।

प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा, नगमा निगार अनबख्शी, मौसीकार उत्तम सिंह।

0: महानदी दरिया में मुसलसल पानी बढ़ने से कटक, पुरी, जगतपुर, जगतसिंहपुर, केंद्र पाड़ा और खोड़ा जिलों के नशीबी इलाकों में दोबारा सैलाब आने का खदशा बढ़ गया है। वजीर आला ने भद्रक, बालासोर, जाजपुर और क्वींझर के सैलाब से मुतासर जिलों का भी फजाई सर्वे किया ताकि मौजूदा सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए। रूस ने ये हमले निसफ शब में किए थे। यूक्रेन की सरकारी एजेंसी सर्विस के मुताबिक सोलोम्यांस्की जिले में हमले से 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरकर तबाह हो गई। बाद में इसमें आग लग गई। राहती टीमों ने ऊपर की मंजिलों से 35 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया है। इस जिले में 2 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हुए, जबकि राजधानी कीव के डनेत्स्की जिले में 7 अफराद मारे गए और 14 दीगर जख्मी हुए, जबकि हमले से आग लग गई और रिहायशी इमारतों, गाड़ियों, इंतजामी दफातर और दीगर गैर रिहायशी ढांचे को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के नायब सदर जेडी वान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और वाशिंगटन में इस हफ्ते के शुरू में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने सदर ट्रंप के साथ अपनी मीटिंग को मुस्बत और समर आवर करार दिया। शुमाली जापान के आओमोरी प्रिफेक्चर में आज 5.8 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जापान की मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बताया कि जलजला 80 किलोमीटर गहराई में महसूस किया गया। ये जलजला मंगल को कुमामोटो प्रिफेक्चर में आए ताकतवर जलजले के कुछ दिन बाद महसूस किया गया। कुमामोटो प्रिफेक्चर में आए जलजले से वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। कल हुकाम ने तजवीज की कि कुमामोटो जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 35 हो गई है। ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा आज सेमीफाइनल में शानदार जीत हासिल करने के बाद खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के भोगपुरम में ग्रीन फील्ड एलूरी सीता रमा राजू बैन अक्वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में दहशत गर्दाना होने में जख्मी होने वाला दूसरा मजदूर भी जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। भारत और चीन के दरमियान सिक्किम में नाथुला दर्रे के जरिए सरहदी तजारत आज से दोबारा शुरू हो गई है।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। सामिन, शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, भी आपने याराना फिल्म का गीत सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और साथियों की, गीत अनजान का और संगीत राजेश रोशन का। साथियों, बात करते हैं परीक्षाओं की। परीक्षा के समय बच्चों में मानसिक दबाव आ जाता है, जिससे बचाव कैसे करें? परीक्षा के समय मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिसे समय पर तैयारी करें। आखिरी समय तक पढ़ाई टालने से तनाव बढ़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, पूरे सिलेबस के बजाय उसको छोटे छोटे रूप में पढ़ें। पूरे सिलेबस के बारे में सोचकर घबराने के बजाय एक समय में एक अध्याय पर ध्यान दें। पर्याप्त नींद लें। परीक्षा के दिनों में 7-8 घंटे की नींद याददाश्त और एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखें। बार बार अगर पेपर खराब हो गया, ऐसा सोचने के बजाय मैंने अच्छी तैयारी की है,

मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, यही सोचें। बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। लगातार कई घंटों तक पढ़ने की बजाय 10-15 मिनट बीच में आराम करना जरूरी है। श्रोताओं, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, इससे ध्यान भटकता है और चिंता बढ़ सकती है। हल्का व्यायाम या टहलना, रोज 15-20 मिनट की सैर मन को शांत रखती है। परीक्षा से पहले दूसरों से तुलना बिल्कुल भी न करें। हर विद्यार्थी की तैयारी और क्षमता अलग होती है। संतुलित भोजन करें। बहुत अधिक चाय, कॉफी या जंक फूड लेने से बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं और पौष्टिक भोजन करें। परीक्षा कक्ष में शांत रहें। पहले पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, फिर आसान प्रश्नों से शुरुआत करें। साथियों, याद रखें, परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। आत्मविश्वास, नियमित तैयारी और सकारात्मक सोच से मानसिक दबाव काफी कम किया जा सकता है। साथियों, हम बातचीत और भी करेंगे। आइए सुने ये गीत, जिसे हमने लिया है साजन फिल्म से, आवाज एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत समीर का, संगीत नदीम शरवण का।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में आइए सुने दिल दीवाना फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज में।

साथियों, बात करते हैं माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य और संस्कार विषय पर। साथियों, माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। उनके प्रेम, त्याग और समर्पण का मूल्य चुकाना संभव नहीं है, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार और संस्कारों के माध्यम से हम उनके प्रति अपना कर्तव्य अवश्य निभा सकते हैं। बच्चों का पहला कर्तव्य है कि वे माता पिता का सम्मान करें और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। उनके अनुभव जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। बच्चों को चाहिए कि वे माता पिता के प्रति प्रेम, आदर और कृतज्ञता का भाव रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। साथियों, अच्छे संस्कार बच्चों को विनम्र, अनुशासित और जिम्मेदार बनाते हैं। सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर माता पिता की सहायता करना अच्छे संस्कारों की पहचान है। जैसे जैसे माता पिता की आयु बढ़ती है, बच्चों का दायित्व और भी बढ़ जाता है और वे उनकी देखभाल में उनका सहयोग करें और उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दें। आज के आधुनिक युग में भौतिक सुविधाओं का महत्व बढ़ गया है, लेकिन माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सफलता के साथ साथ सच्चा सुख भी प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चे का ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के प्रति सम्मान, सेवा, प्रेम और समर्पण का भाव रखे। यही सच्चे संस्कार हैं और यही एक आदर्श जीवन की पहचान है।

हम साथ साथ हैं। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ें थी हरिहरन, प्रतिमा राव और साथियों की, गीत राजेंद्र रावल का और संगीत राम लक्ष्मण का। साथियों, बात करते हैं यातायात नियमों की। यातायात नियम केवल कानून नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की ढाल है। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोग घायल होते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। सड़क पर वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, निर्धारित गति सीमा का पालन करें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, लाल बत्ती पर रुकें, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता दें और नशे की हालत में कभी भी वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन करके हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित यात्रा वही है जिसमें सावधानी और जिम्मेदारी दोनों शामिल हो। आइए हम सभी संकल्प लें कि यातायात नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। यातायात नियम अपनाएं, सुरक्षित जीवन का सुख पाएं। कार्यक्रम में आइए सुने उदित नारायण और अलका याग्निक को, गीत जावेद अख्तर का, संगीत अनु मलिक का, फिल्म का नाम डुप्लीकेट।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: साथियों, कार्यक्रम में आइए अब सुने पंकज उदास और साधना सरगम को। फिल्म का नाम मोहरा, गीत इंदिवर का और संगीत विजू शाह का।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: साथियों, बात करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग विषय पर। साथियों, पर्यावरण केवल हमारे आसपास का वातावरण नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरे भरे वृक्ष और प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति की अनमोल देन के रूप में व्याप्त हुए हैं। किंतु बढ़ते प्रदूषण, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। आज हम सभी को समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए। जल और बिजली का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या जूट की थैलों का प्रयोग करना चाहिए। अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखना तथा कचरे का उचित निस्तारण करना भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा का अर्थ है अपने भविष्य की रक्षा करना। यदि आज हम प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ वातावरण मिलना कठिन हो जाएगा। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हमारा छोटा सा प्रयास धरती को सुरक्षित और सुंदर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हरियाली का सम्मान करें, तभी हमारा भविष्य और पर्यावरण सुरक्षित होगा। और लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

साथियों, बात करते हैं मोबाइल का हम कितना और कैसे उपयोग करें। साथियों, आज के आधुनिक युग में मोबाइल फोन हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, संचार जैसे अनेक कार्य मोबाइल के माध्यम से आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य, अध्ययन और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए मोबाइल संतुलन उपयोग करना अति आवश्यक है। संतुलित उपयोग करना ही सही रहता है। साथियों, लगातार मोबाइल का उपयोग करने से आंखों पर तनाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और एकाग्रता की कमी आ सकती है। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में मोबाइल की लत पढ़ाई, खेलकूद और पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कई बार लोग वास्तविक जीवन के संबंधों से दूर होकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं। मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाना संभव नहीं है और न ही आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी कई ज़रूरतों को पूरा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका उपयोग केवल ज़रूरत के समय, ज़रूरत के अनुसार ही करें। भोजन के समय, पारिवारिक बातचीत के दौरान और सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय किताब पढ़ने, व्यायाम करने, मित्रों और परिवार के साथ बिताने और प्रकृति के बीच रहने के लिए निकालना चाहिए। साथियों, परिवार के साथ समय बिताने तथा प्रकृति के बीच रहने के अलावा हम बात करें तो मोबाइल एक उपयोगी साधन है, लेकिन वह हमारे जीवन का स्वामी नहीं है बल्कि सेवक होना चाहिए। जब हम इसका संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तभी यह हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए मोबाइल से उचित दूरी बनाए रखना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

श्रोताएं, इसी के साथ अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को आज का युवाणी का ये अंक समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार।

युवा श्रोता भी ये वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। किसान वाणी प्रोग्राम सुनिएगा 7:00, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

चौपाल में आज 7:30 पर आप सुनेंगे कृषि संबंधी जानकारियां। बरसात के पानी का सदुपयोग, मानसून में पशुओं की देखभाल, नरमे की फसल में खरपतवार और नियंत्रण। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत और लोक भजन। संसद समीक्षा सुनिएगा 8 बजे। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत में कुछ गजलें सुनिए रात 9:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सिराई की।

सावे पत्ते घिन के आओ। हूं दा होर सोचण लग पिया ते परेशान थी गया कि मैं क्या करा, किवें वो पत्ते घिन के आवां। औरत दी ख्वाहिश हर गुजरदे डी नाल वधदी गई कि वो पत्ते नहीं मिल सकदे। जेरे वेले उको लगा कि वो सावे पत्ते नहीं मिल सकदे तो वो बीमार थी गई। हूं दा घोट हुंदे खावण वास्ते खावण दियां बहुत सारी छइयां घिन के आया, लेकिन उन्हें खावण तो मना कर दिता कि वो सिर्फ सावे पत्ते ही खासी। हुंदा घोट खौफ ज्यादा थी गया ते एक रात उन्दे घोट ने फैसला किया कि वो पत्ते त्रोड़ के घिना सी। घोट ने आखा, परेशान ना थी मेरी जान, मैं तेरे वास्ते वो पत्ते त्रोड़ घिना सा। वल हुंदी कुंवार ने आखा, तुहाडी जान को खतरा है, तो रोवण लग पई। उन्दे घोट ने सोचा, हिंदे कोलो पहले मेरी कुंवार मर वंजे, मैं सावे पत्ते घिन के आसा, भावें मेरे को कुछ भी खतरा चावना पवे। अपनी कुंवार की एक ख्वाहिश जरूर पूरी करे सा। जिवें ही अंधारा थिया, उस आदमी ने हिम्मत की ते वो छाल मार के बाग विच लगा गया ते पत्ते त्रोड़ घिन आया ते अपनी कुवार को दित्ते। हुंदी कुवार वो पत्ते खा के बहुत खुश थी गई, वो ठीक थीवन लग गई। लेकिन वो पत्ते काफी कहना हन, वो पत्ते इतने मजेदार हन कि हुंदी कुवार को खावण दी ख्वाहिश 3 गुना वध गई। ते अगले दिहाड़े वो आदमी बाग विच वला गया, उथा बुढ़ड़ी उन्दा इंतजार करेंदी पई है। उस आदमी को देख बुढ़ड़ी बहु गुस्से नाल बोली, तै हिम्मत किवें कीती, तू चोरी नाल मेरे बाग विचों सावे पत्ते त्रोड़े, तैकू हिंदी सजा मिल सी। हूँ आदमी ने आखा, मेरे को माफ कर रहे हो, मेरी कुवार उम्मीद नाल है, मेरी कुवार ने जेड़े वेले दे पत्ते डिट्ठे हैं, हूँ वेले दे जिद कीती बैठी है कि यो पत्ते खासा भी या कुछ भी ना खासा, अगर उको ये पत्ते ना मिले तो वो मर वैसी। बुढ़ड़ी ने आखा कि तै मेरे को इजाजत क्यों नहीं खिदी। आदमी ने आखा कि मैं डर गया हम कि तुसा गुस्सा करे सो। बुढ़ड़ी ने आखा कि अगर ये गाल है तो तू जितते चाहे उत्ते पत्ते घिन सकदी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू वो बाल मैकू देसे जैनो तेरी कुवार जन्म देसी। वो आदमी बहु घबरा गया ते डर दे मारे हाँ कर दिती। ते वो वक्त भी आ गया जर वेले बाल जम पिया ते वो हिक छेर आई। वो घोट कुवार बहु खुश थी गए ते बाल को लाड़ प्यार करन लग पे। लेकिन उसी वेले वो बुढ़ी उठा आ गई, उन्हें बाल दा नाम रूपल रखा ते वो छेर को घिन गई। वो घोट कुमार बहु दुखी थी गए। वो बुढ़ी उस छुएर को जंगल विच एक मीनार ते घिन गई, जैंदा ना कोई पौड़ी हाई ना कोई दरवाजा हाई, सिर्फ एक बारी हाई, जिथू वो बुढ़ी उको मीनार दे अंदर घिन गई। रूपल उस बुढ़ी को ही अपनी माँ मनन लग पई है। वक्त नाल रूपल वड्डी थींदी गई। रूपल दे वाल सुनहरी हन, रूपल दे सुनहरी वाल भी वड्डे ते बहु वड्डे थीवन लग पे। बुढ़ी को पता लगा कि रूपल दे सुनहरे वालां विच बहु ताकत है, ही वास्ते उन्हें रूपल दे वाल कदे भी नहीं कटवाए। रूपल दे वाल सोने वर्गे सोने हन। वल बुढ़ड़ी जड़न भी मीनार विच आउणा चाहती हाई ते थल्लों हकल मरेंदी हाई, रूपल और रूपल अपने वाल थल्ले सट, मैं उत्ते आउणा है। जड़न भी रूपल आवाज सुनदी हाई ते अपने वाल थल्ले सट देंदी हाई ते बुढ़ड़ी सुनहरे वालों को नप के मीनार ते चढ़ाती हाई। जिवें जिवें रूपल वड्डी थींदी गई ते हुंदा दिल बार वंजन दा थींदा हाई, वो बाहर दी दुनिया देखना चाहती हाई। जेड़े वेले वो बुढ़ड़ी को आखा कि माँ मैं बाहर वंजना चाहती हाँ, ते बुढ़ड़ी ने उसको आखा कि मैं तेको इत्था ही वास्ते घिन के आई हाँ कि तू महफूज रहे, बाहर दी दुनिया बहुत जालिम है, वो तेको मार देसन, ही वास्ते मैं तेको बाहर नहीं भिजेंदी। जडन रूपल दा 16वां जन्म भी आया ते रूपल ने अपनी माँ को आखा, मैं हूं 16 साल दी थी गई हाँ, मैं अपना जन्मदिन मीनार तो बाहर बन के मनाना चाहती हाँ, मैं को बहु चंगा लगसी, मैं बाहर बन के बहु खुश थी सा तो मैं बहु कुछ सीख सा, मैं एक बारी बाहर बनना चाहती हाँ, मैं दुनिया के बारे में पढ़ा है, मैं अपना ध्यान रख सकती हाँ। लेकिन बुढ़ड़ी ने उसको गुस्से नाल चुप करवा दिता, तू कम अकल ही, तू बाहर नहीं बन सकती, मैं तेको बहु प्यार करेंदी हाँ। ते रूपल सुचेंदी रहेगी, काश कोई मैकू बाहर घिन वंजे। इवें ही करेंदे हुए 2 साल लंघ गए। हिक दीवार उस मीनार कोलो हिक शहजादा लंघा, वो शहजादा बहुत सोहना हाई। जडन वो मीनार कोलो लंघा ते रूपल हूं वेले गाना गांदी पई हाई। शहजादे ने वो आवाज सुनी तो उको बहुत चंगी लगी, लेकिन उको कोई नजर नहीं आया। हुने सब तरफ डिठा लेकिन उको कोई भी नजर नहीं आया। वो रूपल हाई जेरी गाना गा के अपना दिल बहलैंदी पई हाई। शहजादे ने डिठा कि वो आवाज मीनार तू आंदी पई है। हुंदा दिल कीता कि वो उन्दे कोलो लगा वंजे। वो उत्ते वंजन का दरवाजा गोलन लगा, लेकिन उको कोई दरवाजा ना लभा, वो वापस लगा गया। लेकिन उको वो गावण इतना चंगा लगा कि वो रोज सुनन वास्ते मीनार कोलू आवण लग पिया। हिक निवारो दरखत थल्ले खड़ा गाना सुनदा पिया हाई। हूं डिठा कि हिक बुढ़ड़ी आई ते उन्हें रूपल को हक्कल मारी कि रूपल और रूपल अपने वाल सट में उत्ते आवना मैडी धी। शहजादे ने डिठा कि उत्तो हिक छुएर ने अपने सुनहरे वाल थल्ले सट्टे और बुढ़ड़ी होना वाला को नपके उत्ते लगी गई। शहजादे ने सोचा कि अगर ये मीनार ते वंजन का रास्ता है तो मैं भी जरूर वैसा। अगले दीवार जिवें ही अंधारा थिया, शहजादा मीनार कोलू आया ते उन्हें आवाज बदल के हक्कल मारी, रूपल और रूपल अपने वाल थल्ले सट, बच्चे तेरी माँ ने उत्ते आवना है। ये सुन के रूपल ने अपने वाल सट्टे ते शहजादा उन्हें सुनहरी वाला को नपके उत्ते आ गया। शहजादा जिवें ही उत्ते आया, रूपल उस शहजादे को देख के बहु घबरा गई। ही कंजान आदमी जंदो वो कदे ही नहीं डिठा उत्ते आ गया है। रूपल पूछा, कौन है तू? हूं आखा मैं शहजादा हाँ। शहजादे ने हुंदे गाने की तारीफ की ते हुंदी भी तारीफ की ते रूपल

0: खुश थी गई। शहजादा भी रूपल दे हुस्न दा दीवाना थी गया। शहजादे ने रूपल को आखा, तू मेरे नाल काज करे से, मेरी कुआर बन से। रूपल ने हाँ कर दी। आखा, मैं बाहर वंजना चाहती हाँ, लेकिन मेरी माँ मेरे को वंजन नहीं देती। रूपल ने आखा, मैं थले किवें वैसा। शहजादे ने को वायदा किया, मैं तेरे को कल अपने नाल गिन वैसा। रूपल ने सोचा, माँ की बजाय मैं शहजादे नाल खुश रहा सा। शहजादा मेरे को बार गिन वैसी, मेरे को दुनिया रिखेसी। ये सोच के हूँ अपना हाथ शहजादे के हाथ भी दे दिता। शहजादा अगले दिन वापस आवन का वायदा करके अपने महल लगा गया। थोड़ी देर बाद जेरे वेले बुढ़ी उठा आई तो हूँ शहजादे को मीनार तू थले लहंदे हुए डिठा। तू को शक थी कि कोई गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद बुढ़ी ने हक्कल मारी, रूपल और रूपल अपने वाल थले सट दिए, मैं उत्ते आवने। ये सुन के रूपल ने अपने वाल थले सट्टे ते बुढ़ी उत्ते लगी गई। बुढ़ी को रूपल ते बहुत गुस्सा आया। उन्हें गुस्से नाल रूपल को धक्का दिता ते पूछा, इथा कौन आया है। रूपल ने डर दे मारे कुछ भी नहीं आखा। बुढ़ी ने आखा कि तू इत्थों भजन की कोशिश की थी। मैं तेरे को पाल पोस किता वड्डा कीता है, तू मेरे को धोखा देवण की सुचेंदी पई, तेरे को हिंदी सजा जरूर मिल सी। बुढ़ी ने रूपल के सुनहरे वाल पकड़े ते कैंची नाल कप दिते ते रूपल को एक जंगल विच भेज दिता जिथा कोई आंदा वेंदा ना है। बुढ़ी उतां शहजादे का इंतजार करन लग पई। अगले दिवार शहजादा मीनार तले आया ते रूपल को हक्कल मारी ते बुढ़ी ने रूपल दे वाल थले सट दिते। शहजादा वाला को नप के उत्ते आ गया, लेकिन उतां रूपल की बजाय बुढ़ी खड़ोती है जेड़ी उकू जालिम नजर नाल रेदी पई है। बुढ़ी ने आखा, तू अपनी महबूबा रूपल को मिलन आई ना, मैं उकू इतों बहुत दूर भेज दिते, तू हुण उकू कदे ही नहीं मिल सकता। ते ऊं शहजादे को गुस्से नाल मीनार तो थले धक्का दे दिता। शहजादे को बहुत सट्टा आईया ते हुंदी अखां दी रोशनी लगी गई। वो जंगल विच फिट गया। कितने सालां तक उथे ही घूमदा रिया ते घास पत्ते खा के अपना पेट भरेंदा रिया। हिक दीवार एक रेगिस्तान विच पहुंच गया। उथा गावण दी आवाज आंदी पई है। वो उस आवाज दे सहारे उस जगह तक पहुंच गया तो उसने वो आवाज पहचानी। वो आवाज रूपल दी आई। दुवे मिले ते रूपल ने भी शहजादे को पहचान खिदा ते रोवण लग पई। रोंदे रोंदे रूपल दे हंजू शहजादे दी अखियां विच डठे ते शहजादे दी अखियां ठीक थी गईयां। शहजादा पहले अली गाह देखण लग पिया। वाला वो शहजादे दे महल लगे गए। शहजादा रूपल को अपने महल घेन आया जिथा उनका बहुत स्वागत थिया। बादशाह ते रानी अपने फिट्टे हुए शहजादे को देख के बहुत खुश थी गए। कुछ देर बाद लोगों को पता लगा कि उयो छेरे जैको बुढ़ी अपने नाल चाह गई है। रूपल को पता लगा कि हुंदे असली माँ प्यो कौन हिन। ओ वल उना को मिली। रूपल दे माँ प्यो अपनी धी को जवान देख के बहुत खुश थे तो उन्होंने रूपल को दसा कि वो बुढ़ी भी मर चुकी है। उन्होंने डुआ ने काज करने का फैसला किया। वल बादशाह ने शहजादे ते रूपल की शादी का ऐलान कर दिता ते बहुत धूमधाम नाल नुआ का काज करवा दिता। एक वड्डी दावत भी कीती। हिंदे बाद शहजादा ते रूपल हंसी खुशी अपनी जिंदगी बितावण लग पे।
1: सुनहरी वाल, हुणे तुसां ए कहानी सुनदे पए हवे। कहानी सुनावण वाले हन वीरेंद्र पुंजानी। मेरा ख्याल ए कहानी तुहाकू चंगी लगी हो सी। सराइकी प्रोग्राम सुनन आलियो, आधे ने जिथे ही न पूजे रवि उथे ही पूजे कवि। तुसां समझ गए हो सो कि हुण मैं तुहाकू सुनवेंदी पई हां काव्य पाठ। जी हाँ, सुनेंदे हाँ ज्योति चंद्र दा काव्य पाठ।
2: सारे सिराई की भीनी भिरावां को राम राम ते बहुत सारा प्यार। मैं तुहाडी अपनी ज्योति वेद अज एक वारी वला तुहाडे सारे नाल रूबरू थींदी पई हाँ। वैसे ता तुहाडे नाल रूबरू थी के मैं को हमेशा ही बहुत खुशी थींदी है, लेकिन अज दी खुशी कुछ खास है क्योंकि अज मैं तुहाडे वास्ते अपनियां लिखियां होईयां कुछ लिखतां गिन के हाजिर थई हाँ। उम्मीद करेंदी हाँ तुसां पसंद करे सो ते मेरा हौसला भी वधे सो। चस गिनो जी, अज दी मेरी पहली लिखत दा नां है तैडा मैडा प्यार। जिवें असा सारे जानदे हाँ कि घोड़ ते कुआर इक्को साइकिल दे दू चक्के हुंदे। इक चक्का भी अगर जाम थी वन्ने तां दूजा रुक वेंदे। ते ही रिश्ते विच थोड़ी नोक झोंक, रुठना मनावना, गुस्सा ते प्यार सब नाल नाल चलदे। ते सारी शिकायतां कोलों बाद भी इक दूजे बगैर गुजारा कहीं नहीं थी सकदा। बस इयो भाव गिन के मैं हाजिर हाँ। मेरे लिखत दा नां है तैडा मैडा प्यार। ए दुनिया है बहु जालम कोई न चलसी नाल। ए दुनिया है बहु जालम कोई न चलसी नाल। मैं तैडी ते तू मैडा बस इयो सच्ची गाल। होविन भावे शिकवे गिले भावे रंजिशा हजार। होविन भावे शिकवे गिले भावे रंजिशा हजार। दिला विच है मुहब्बत करना सकसे तू इनकार। अज असा हाए नाल नाल अज असा हाए नाल नाल। रुसदे मनींदे जिवें जवाक। छुट गया जो साथ ते वदा थी से कला हलाक। छोड़ सारी रंजशां ते भुलवन हर मंदी गाल। छोड़ सारी रंजशां ते भुलवन हर मंदी गाल। रल मिल वंडू सुख दुख ना रावे दिला विच कोई मलाल। हसी खुश

खुशी जी घिन्नू, जिंदड़ी है बड़ी कमाल। हसी खुशी जी घिन्नू, जिंदड़ी है बड़ी कमाल। रब कोलू भी वत पुजू असा डुहाएं नाल नाल। रब कोलू भी वत पुजू असा डुहाएं नाल नाल। मेरी अगली लिखत का नाँ है अलविदा। हिंदे विच हिक छेर अपने बेवफाई करन वाले प्रेमी को अखेंदी पई है कि मैं वार वार तड़ी हर गलती माफ च करेंदी हाँ, क्योंकि मेरा प्यार तड़े वास्ते सच्चा है ते इहो सच्चा प्यार तैकू मेरे कोलू वापिस घिना सी, और अगर इवें ना थी सका तो मैं अपनी जिंदगी को ही अलविदा आख दे सा, क्योंकि तेरे बगैर जीवन का कोई मतलब कह नहीं। चस गिनो जी अलविदा। एक बारी वत दिल को तोड़ा है तू, एक बारी वत दिल को तोड़ा है तू, एक बारी वत तनहा छोड़ा है तू। समझ कह नहीं आंदा कि बेगैरत कौन है, समझ कह नहीं आंदा कि बेगैरत कौन है तू, जड़ा हजार माफियों को लूं बाद भी वह तू उथी वहना है, या वल मैं जो तेरी हर गलती को इवें भुला देंदी हाँ जिवें कुछ थिया ही कहनी। अखाण है कि उम्मीद ते दुनिया कायम है, अखाण है कि उम्मीद ते दुनिया कायम है, मेडी ता उम्मीद भी तू है ते दुनिया भी तू, एक तू है जेड़ा अपनी गाल ते कायम कहनी। जिद ते अड़ी हाँ मैं हुण, जिद ते अड़ी हाँ मैं, वत ही तड़े नाल खड़ी हाँ मैं। देखा ते सही कहंदी गैरत जागदी है पहले, देखूं ता सही कहंदी गैरत जागदी है पहले, तैडी जागी त जी वैसा मैं, मैडी जागी त अलविदा थी वैसा मैं। तैडी जागी त जी वैसी जोत, मैडी जागी त अलविदा थी वैसी जोत। हुण मैडी एक बई लिखत तुसा मुलायजा फरमाओ जी, जिंदा नाम है हाँ दी पीड़, कि किवें एक त्रिमत अपनी सारी जिंदगी अपने खोट दे हिसाब नाल चलती है ते उन्दे कए दे विच बिता देंदी है, भावें अपना मन मारना पवे लेकिन उन्दे वास्ते उन्दे खोट दी खुशी सब तो अधिक मायने रखेंदी है, ते ओ त्रिमत उन्दे विच ही अपनी खुशी लभ खेंदी है, ते सारी जिंदगी अपने हाँ दी गाली को हाँ दे विच ही रख के सारी उम्र कट गिंदी है। गौर नाल सुनो जी, हाँ दी पीड़। बहु गाली को हाँ विच दबी बैठी हाँ, बहु गाली को हाँ विच दबी बैठी हाँ, कैंकू शिकवा करा सुचेंदी बैठी हाँ। दिल दा जेड़ा जानी हाई, दिल दा जेड़ा जानी हाई, जान ही कढ़ के घिन गया होता, हुण बस रब कोलू आस लगाए बैठी हाँ। चाहाई अपना भी हिक ना होवे, चाहाई अपना भी हिक ना होवे, चाहाई अपना भी कोई मकान होवे, करके हिक जिंदगी को दफन जोत दूजी को तलाश कीती बैठी हाँ। मुश्किल बहु हाई तेडे कोलों दूर वनना, मुश्किल बहु हाई तेडे कोलों दूर वनना, जिंदड़ी को हासिल करना ते जिंदड़ी को ही भूल वनना, वती ही जहर को पीती बैठी हाँ, वती ही जहर को मैं पीती बैठी हाँ। डिठुम तेरी खुशी, डिठुम तेरी खुशी, जेंदे विच हाँ दे जानी, राह वो मैं चुनी बैठी हाँ। छोड़ दे तुम तैकू तेरी ही खातिर, वन छोड़ दे तुम तैकू तेरी ही खातिर, ते बदनामी अपने सिर घिदी बैठी हाँ। जी घिन जिंदड़ी हुण खुशी नाल तू, वन जी घिन अपनी जिंदड़ी हुण खुशी नाल तू, ए दुआ ही तेरे नाम मैं कीती बैठी हाँ, ए दुआ ही तेरे नाम मैं कीती बैठी हाँ। एक बई लिखत थोड़े नज़र करेंदी पई हाँ, जिसका नाम है तू मेरा मुस्तकबिल। हे लिखत विच एक छेर अपने हाँ दे भाव दसेंदी पई है कि किवें डू प्यार करन आले असा भावें अज निखड़ गए हाँ, लेकिन मैकू अज भी उम्मीद है कि एक दीवार असा जरूर मिलसूँ ते तू ही मेरा मुस्तकबिल बन सें। चस गिनो जी तू मेरा मुस्तकबिल। तू तो ना मिलो लेकिन कशिश है बरकरार हले भी, तू तो ना मिलो लेकिन कशिश है बरकरार हले भी, उम्र कटींदी पई है ते खलिश है बरकरार हले भी।

0: ना तू खुद परस्त हावें, किस्मत तू अपनी हैरान हाँ हले भी। समझेंदी है जोत मैडा माजी है तू, ए समझेंदी हाँ मैं मैडा माजी है तू, मुस्तकबिल भी थी से मैडा ए उम्मीद है हले भी। मुस्तकबिल भी थी से ए उम्मीद है हले भी। ते ए बहुत सारी सीरियस लिखता तो बाद अज मैं एक बचपन की तुहाकू पोएम सुनैनी हाँ। मेरी जिहड़ी ये लिखत है तुसा सारिआं को उम्र के उस प्यारे समय के विच गिन वैसी जिहड़ा जिंदगी का सब तो प्यारा ते बेफिक्र समा हुंदा है, यानी कि बचपन। जदन असा सारे अपने यार बेलियां ते सहेलियां नाल बहुत चंगा वक्त बिताया है ते हुण बस उस डियां दियां यादां ही साडे नाल हैं। मुलायजा फरमाओ, इस लिखत दा नाम है बचपन। हाँ वो बचपन, अनमोल बचपन, यादां दा खजाना खटड़ा मिठड़ा, बचपन हाई सब तू अनमोल। जदन हिक कट्टी नाल शुरू थिया झेड़ा, अब्बा आख के खत्म थी वेंदा हाई। जडण एक कट्टी नाल शुरू थिया झेड़ा, अब्बा आख के खत्म थी वेंदा हाई। जडण एक दूजे को मिले बिना डी पूरा ना थींदा हाई। सच्ची वो बचपन, अनमोल बचपन, यादा दा खजाना खटड़ा मिठड़ा। वो वक्त चंगा हाई जडण रल मिल बांदे हसे, वो वक्त चंगा हाई जडण रल मिल बांदे हसे, कुछ तू अपनी कुछ मैं अपनी जिंदड़ी दा हाल वनेंदे हसे। तैडा दुख मैडा हाई ते मैडा दर्द तैडा हाई, तैडा दुख मैडा हाई ते मैडा दर्द तैडा हाई। हाँ बचपन हाई सब तू अनमोल, यादा दा खजाना खटड़ा मिठड़ा। हुण वड्डे जो थी गए हाँ, हुण वड्डे जो थी गए हाँ, बहु गाली अंदर ही अंदर पी गए हाँ। कुछ सपने पूरे थे ते कुछ सपने ही रह गए, कुछ सपने पूरे थे ते कुछ सपने ही रह गए, लेकिन उस अनमोल बचपन दियां मिठियां खटियां यादां दा खजाना हजन भी साडे नाल है। वो बचपन, अनमोल बचपन, यादां दा खजाना खटड़ा मिठड़ा, यादां दा खजाना खटड़ा मिठड़ा।
1: हुणे तुसां कावे पाठ सुणदे पए हवे। कावे पाठ करेंदे पए हन ज्योति चंदर। सुनण आलियो, ये कवितावां तुहाकू किंज दियां लगियां साकू खत विच लिख के दसना। ते हुण मैं एक सराइकी गीत भी गिन के आई हाँ। गीत बहु वधिया ए। कदी यार होंदा सी साडा, कदी प्यार होंदा सी साडा। गावण आले हन महक मलिक।

0: ए हई महक मलिक दा गाया गीत सिराइकी प्रोग्राम तुसा ऑल इंडिया रेडियो तू सुनदे पए हवे। ते हुण प्रोग्राम इत्थां ही खत्म करके घरां को जुलदे हां। अपनी मित्र हरजीत कौर को इजाजत देवो।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिराइकी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। श्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में बने नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साल 2014 से देश में 74 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि NDA सरकार में छोटे शहरों के लोग भी हवाई सफर कर रहे हैं।
3: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री श्री मोदी कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत पोर्टल के जरिए इस देशव्यापी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा स्थानों को जोड़ते हुए यह अभियान नशे के सेवन के खिलाफ सामूहिक संकल्प की एकजुटता को मजबूत करता है। इसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठन, युवा क्लब, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक

0: संघ और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवक अपने अपने स्थानों से जुड़ेंगे। 100 सप्ताह के इस अभियान के दौरान पदयात्रा, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक और खेल आयोजन तथा अन्य गतिविधियां होंगी। इन सभी के जरिए नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। ये अभियान युवा पीढ़ी को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। आज उदयपुर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने को लेकर सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति, आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कालका माता नर्सरी परिसर से इस अभियान की शुरुआत की। गौरतलब है कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत इस साल मॉनसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस मिशन के तहत अब तक 20 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अरावली संरक्षण के लिए 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वृक्षारोपण किया जाएगा। वहीं उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश भर में आज स्तनपान सप्ताह की शुरुआत हुई। इसके तहत 7 अगस्त तक लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस दौरान प्रसूताओं, धात्री माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान का महत्व बताया जाएगा। अलवर के मदर मिल्क बैंक में स्तनपान सप्ताह के दौरान वर्कशॉप, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली सहित अन्य आयोजन होंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रदेश में सुरक्षित मातृत्व सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को समय पर बेहतर इलाज के लिए रेफरल परिवहन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सुरक्षित प्रसव और जननी एक्सप्रेस सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश सहित परिपत्र जारी करने को कहा। जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन से वीसी के जरिए हुई इस बैठक से मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, सीएमएचओ और अन्य अधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और हाइपरटेंशन के लिए एसओपी जारी करने को कहा, जिससे प्रदेश भर में एक समान उपचार प्रोटोकॉल की पालना हो सके। राज्य में कर चोरी और अपात्र कर लाभ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से कई जिलों में आज सर्वे की कार्यवाही की गई। राजसमंद, बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और जयपुर सहित कई जिलों में एक साथ जांच की। इसमें कई मामलों में कर कानूनों के उल्लंघन और कम टैक्स दिखाने और देने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन मामलों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। विभाग ने कहा है कि राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्सेंडल एट AIR न्यूज अंडरस्कोर जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। श्री बागड़े ने SKRAU में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 40 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। करीब 28,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कृषि प्रशिक्षण किया है। श्री बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है।
2: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि SKRAU को इंडिया AI मिशन से कृषि

0: आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी मिली है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों और कृषि शोधार्थियों को फायदा मिलेगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में केंद्र सरकार और एमसीसी ने वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें छात्र घर बैठे ही फ्रीज और फ्लोट विकल्प ऑनलाइन चुन सकेंगे। विद्यार्थियों को कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने राज्य के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सत्यापन निर्धारित समय सीमा में पूरा करना होगा। देरी होने पर संबंधित सीट स्वतः ही निरस्त हो सकती है। श्री गोयल ने प्रवेश शुल्क की जानकारी पोर्टल पर तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सीतापुरा स्थित JECC में हो रहे इस सम्मेलन को आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। श्री देवनानी ने इस मौके पर प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन यहाँ की पहचान और संस्कृति हैं। कैटरिंग उद्योग के लोग इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े लोगों से स्वाद के साथ साफ सफाई, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो शावकों के साथ नजर आई है। इससे वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटकों में उत्साह है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शावकों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है, जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जेवलिन थ्रो, ट्रिपल जंप, जूडो और मुक्केबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण, नीरज चोपड़ा ने रजत, यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न नेताओं ने देश का गौरव बढ़ाने पर इन खिलाड़ियों की मेहनत और शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज और कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत के लिए भी प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। उनका मुकाबला आज इंग्लैंड की चेंटेल रीड से होगा। 8 गोल्ड, 15 सिल्वर और 7 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में भारत फिलहाल छठे स्थान पर बना हुआ है। फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिवस कल मनाया जाएगा। देश भर में अगस्त के पहले रविवार को ये दिन मनाया जाता है। मैत्री दिवस दोस्ती को समर्पित है। इस दिन लोग एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड, उपहार और कार्ड का आदान प्रदान करते हैं। ये दिन एक दूसरे से जुड़ने, मित्रों के आभार व्यक्त करने के साथ ही आत्मीय और खुशनुमा माहौल प्रदान करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कई मुकाबलों में पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। पिछले महीने बीकानेर जिले में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। हरियालू राजस्थान अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण हुआ, नशा मुक्ति अभियान को गति मिली, स्वतंत्रता दिवस

0: की तैयारियां शुरू हुई और विभिन्न विभागों ने जनसुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रस्तुत हैं बीकानेर जिले की प्रमुख गतिविधियां। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय में औषधीय पौधों के वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय परिसर में पारिजात, अर्जुन, बिल्व, करंज, मीठा नीम और खेजड़ी सहित अनेक औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने इन पौधों के औषधीय महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका की जानकारी दी और अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ध्वजारोहण, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा, पेयजल, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत जिले के वरिष्ठ नागरिकों को भी बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। देवस्थान विभाग के अनुसार बीकानेर जिले के 205 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के ठहरने, सुरक्षा, अन्य आवश्यक सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। दहेज प्रतिषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ ली। इस अवसर पर दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया गया। विभाग की ओर से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और छात्रावासों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक में नशे की रोकथाम और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रशासन, समाज, शिक्षण संस्थानों और आमजन की संयुक्त भागीदारी जरूरी है। बैठक में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई, जागरूकता अभियान और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है तथा सूचना देने के लिए विशेष हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक कार्यालय का शुभारंभ किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर अभ्यागत केंद्र भी शुरू किया गया है। इससे विद्यार्थियों, अभिभावकों और अन्य आगंतुकों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। जिले में जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेद सिंह रत्नू ने सभी सरकारी अस्पतालों में जन्म और मृत्यु का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम में हेल्प डेस्क स्थापित करने, वृद्धजनों और महिलाओं को प्राथमिकता से सहायता उपलब्ध कराने तथा पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों छतरगढ़ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थानों और ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने पर बल दिया गया। इसी के साथ बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर हूँ, राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावन न सगला री भेली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावन माथे जोर दीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलना माए भारत रा खिलाड़ियों रो चोखो खेल रो दर्शाव। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे।

0: समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में विमानन हलको तेजियों बधरियो है। वह कहो कि उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर न किफायती बना दिनो है। वह आज आंध्र प्रदेश रा भोगपुरम माई बनाई जानुआ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि साल 2014 में देश में 74 हवाई अड्डा है, जारी तादाद अब बेधर 166 वैकी है। वह कहो कि एनडीए रा राज में नाना शहरां री जनताई हवाई सफर कर रही है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान री वर्चुअल तरीकाओं शुरुआत करण रो कार्यक्रम है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय रा माई भारत पोर्टल रे जरिए वो अभियान आखा देश में चलायो जावेला। 10,032 ठोड़ा ने जोड़ता था का वो अभियान नशो करण रे खिलाफ भेड़ा संकल्प ने मजबूत करेला। 100 सप्ताह रा ई अभियान रे दौरान हर दीतवार ने पदयात्रा ध्यान सत्र सांस्कृतिक और खेल आयोजन सागे न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखर नशो नी करण रो संदेश दियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि पर्यावरण ने बचावण री सगला री भेड़ी जिम्मेदारी है, चिणमाए हर रहवासी री भागीदारी वेवनी चाहिए। वे आज उदयपुर में राज्य स्तर रा वन महोत्सव कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि आवती पीढ़ियां सारू सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण बनायो राखण बाबत सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी, आज वो एक जन आंदोलन बन गया है। और आपके माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ कि वो एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं, हमारी माँ की स्मृतियों को भी सजोएं, आने वाली प्रकृति आने वाले पीढ़ी को भी हम ये बताएं कि उनको हम फल भी दे करके जा रहे हैं, छाया भी दे करके जा रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित करके भी जा रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री पौधों रो पर कालका माता नर्सरी परिसरों इनकी शुरुआत किन्नी। ध्यान जोग है कि मिशन हरियाणा राजस्थान रा तहत इन चौमासा में 10 करोड़ पौधा रोपणों तय करीचियो है। इन मिशन रा तहत हाल ताई 20 करोड़ बत्ता पौधा रोप दिया चिया है। अरावली री डूंगरिया ने बचावन सारू 30,000 हेक्टेयर बत्ता हल्का माए पौधा रोपया जावेला, जबकि उदयपुर प्रतापगढ़ सिरोही और बांसवाड़ा माए चंदन वन बनाया जावेला। प्रदेश में आज स्तनपान सप्ताह शुरू हुयो। इरा तेत बच्चा ने मारो दूध पावन रे बारा माए 7 अगस्त ताई जाग जगाई जावेला। इन दौरान नुवी मायड़ा दूध पावन वाली मायड़ा अरवाना परिवार वाला ने स्तनपान रा महत्व री जानकारी दी जावेला। इस सप्ताह रे दौरान अलवर रा मदर मिल्क बैंक माए वर्कशॉप सवाल जवाब री होड़ और रैली समेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। प्रदेश में हिफाजत सागे माँ बनवाऊ जुड़ी सेवाओं रो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जायजो लीनो। वे आस वाली लुगाइया ने टेम सर बेहतर इलाज सारू रेफरल परिवहन तंत्र ने मजबूत बनावन रा हुक्म दीना। मुख्य सचिव हिफाजत सागे जापो करावन और जननी एक्सप्रेस सेवा सारू एकदम साफ दिशा निर्देश समेत सर्कुलर जारी करण बाबत कहो। जयपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल अस्पताल रा सुप्रिंटेंडेंट CMHO और दूजा अहलकार सागे बातचीत करता थका मुख्य सचिव घनी जोखिम वाली आस वाली लुगाइया माए खून री कमी और हाइपर टेंशन नु जुड़ी SOP जारी करण रा हुकम ई दीना। राज्य माए कर चोरी और अपात्र कर लाभ रे खिलाफ चलाया जा रहा अभियान रा तहत वाणिज्य कर विभाग री ओरों आज राजसमंद बाड़मेर प्रतापगढ़ जैसलमेर और जयपुर समेत कई जिला माए सर्वे री कार्रवाई करी जी। इन दौरान कई मामले

0: हमें कर कानून नहीं मानबा और टैक्स री कम जिम्मेदारी बतावन से री की गड़बड़ियां सामी आई। आम मामला माए कागजात री और जांच करी जा रही है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज बीकानेर राजस्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह में शामिल किया वह ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र रो उद्घाटन कीनो। ई मौके राज्यपाल कहो के ओ विश्वविद्यालय लारला 40 साल में 28,000 विद्यार्थियों ने खेतीबाड़ी री सिखावण दीनी। श्री बागड़े कहो के विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावनो आज रा भगत री सब मोटी जरूरत है।
1: राजस्थान में अभी जो नीट का निकाल लगा उसमें राजस्थान ने अच्छी प्रगति की, लेकिन इससे और भी करने की जरूरत है। और माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक, हमारे जूनियर कॉलेज, यहाँ के जो छात्र छात्राएं परीक्षा देती है, अभ्यास करती है, उन्हीं के लिए उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सभी शिक्षकों ने, अध्यापकों ने, यूनिवर्सिटी और स्कूल वालों ने कोशिश करना है।
0: इस मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के SKRAU ने इंडिया AI मिशन खेतीबाड़ी में जुड़ियो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलन री मंजूरी दीनी है। वो सेंटर खोलन सारू करीब 20 करोड़ रुपए रो खर्चो आवेला। नीट UG काउंसलिंग 2026 माए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एक दफा जावन और ऑनलाइन तरीकों कागजात रो सत्यापन करावन री नई व्यवस्था शुरू कीनी है। इन तहत विद्यार्थी घर बैठियाई फ्रीज और फ्लॉट विकल्प ऑनलाइन तरीकों चुन सकेला। नीट UG काउंसलिंग रे बारे में आज चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल प्रदेश रा सगला मेडिकल और डेंटल कॉलेजों रा नोडल अहलकारा सागे मीटिंग कीनी वे कागजात रो ऑनलाइन सत्यापन ते मियाद माए पूरो करन रा हुकम दीना। ऑल इंडिया कैटरर्स फेडरेशन रो राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर माए राख्यो जा रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनरो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे एक प्रदर्शनी री शुरुआती कीनी। कार्यक्रम में देवनानी कहो के राजस्थान रा पारंपरिक व्यंजन अठरी पिछाण है और कैटरिंग उद्योग रा लोग इन्हें देश दुनिया ताई पुगावन रो काम कर रहा है। वह कैटरिंग एंड मेहमान नवाजियों जुड़िया लोगों स्वाद सागे साफ सफाई नई तकनीक और पर्यावरण ने बचावन माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। श्री देवनानी कहो के प्लास्टिक कम काम लेवन और भोजन री बर्बादी रोकण सारू सगला ने मिलर कोशिश करनी वेला। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T127 दो बच्चा सागे नजर आई है। माणा खबर नवीस बतायो के बाघिन रा बच्चा री हिफाजत सारू कैमरा ट्रैप और फील्ड पेट्रोलिंग रे जरिए लगातार निगरानी राखी जा रही है।
2: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आज एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T127 दो शावकों के साथ जोन नंबर 7 में नजर आई है। बाघिन T127 लक्ष्मी T8 लाडली की बेटी है जो करीब 6 वर्ष की है तथा पहली बार मां बनी है। यह बाघिन जोन नंबर 6 और 7 में विचरण करती है। बाघिन के साथ नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। बाघिन के क्षेत्र में लगातार निगरानी और प्रभावी गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार,
0: सवाई माधोपुर। अरब खबर राष्ट्रमंडल खेलना। स्कॉटलैंड रा ग्लासगो में चल रहा राष्ट्रमंडल खेलना में भारत रा खिलाड़ी भाला फेंक, तीन दफा कूद, जूडो और मुक्केबाजी री होड़ा में तमगा जीतिया है। महिलाओं री मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया सोनारा, रजत चौपड़ा चांदीरो और यशवीर सिंह कांसारो तमगो जीतियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत न्यारा न्यारा नेता देश रो माथो ऊंचो करण वाला आंख खिलाड़ियां री मेहनत और शानदार खेल री सराहना कीनी है। इन बीच भारत री मुक्केबाज और कोटारी बेटी अरुंधति चौधरी रो आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड री चेंट्रल रीड मुकाबलो फैला। सोनारा 8, चांदीरा 15 और कांसारा 7 तमगा सागे पदक तालिका में भारत फिलहाल 6ठी ठौड़ माथे है।

0: धंधा सारू काम ली जावन वाली रसोई गैस री टंकी रो मोल करीब 200 रुपया कम करती होचियो है। तेल कंपनियां रा इन फैसलाओं रेस्तरां, होटल, ढाबा और खान पीन री चीजां रा कारोबारियां ने फायदों मिलेला। तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रा मुजब गैस री टंकियां रो नुओ मोल आज लागू फेंक्यो है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी री मदमाए लारला महीना 2,11,200 करोड़ रुपयों बत्ती रकम भेली करी ची। लारला साल जुलाई महीना रा 1,83,065 करोड़ रुपया रे मुकाबले आ 15% बत्ती बढ़ोतरी है। माली साल 2026-27 सारू काल ताई 5,90,00,000 बत्ती आयकर रिटर्न दाखिल करी ची। इन सारू आयकर विभाग री ओरों सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए रिटर्न दाखिल करन वाला रो धन्यवाद करी चियो। प्रदेश रा कई हलका माए आज ही मैं बरसियो। बांसवाड़ा, पाली और भीलवाड़ा माए चोखो मैं व्यो, जदके भरतपुर और बाड़मेर माए छांटो छिड़को फियो। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो उड़ान योजना जनता सारू हवाई सफर किफायती बनायो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उदयपुर राज्य स्तर रा वन महोत्सव री शुरुआत कीनी। पर्यावरण बचावण ने सगला री भेली जिम्मेदारी बतायो। राज्यपाल हरिभाव बागड़े विद्यार्थियों ने दिमागी तौर मजबूत बनावण माथे जोर तीनो। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत रा खिलाड़ियों रो चोखा खेल रो दर्शाओ। 30 तमगा सागे फिलहाल छठी ठौड़ माथे। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाला सगला श्रोताओं ने आशा था भाई का घना घना राम राम सा, और प्रभु भाई आपने भी मारा घना घना राम राम।
7: बिल्कुल, आपने और सुनवा वाला जता भी अपना हितालु श्रोता है जगह दूर दराज गांव ढणी रामायण बैठ रेडियो सुने है, और आज को तो आपनो विशेष कार्यक्रम है किसान वाणी, तो आप सगला हितालुआ ने घने मानसो थका भाई प्रभु दयाल वर्मा की तरफ से भी राम राम सा। देखो बिरखा रो दौर चलन लाग रहे है, और अस्यारे मायने जहाँ आप रोजना कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से बातड़ी आप किसान भाई तक पूगती हुए कि भाई अच्छा टाइम कमाए तो एक तो आपने पानी है भी की आपन बचत करनी चाहिए।
6: बिल्कुल,
7: क्योंकि आपने जीवन को जल ने है जो जीवन को आधार बताए गए है, और महापुरुष भी कहे कि भाई 3 रत्न है जगत में, दाना पानी और बोल।

0: आंखें आगे और क्या देखा खूब टटोल, यानी कि
1: जी
0: दाना है पानी है और बोल है इंसान रा, ए दुनिया का बड़ा जगह रतन है, कीमती वस्तुओं वहाँ के मायने अन्न शामिल किया गया है। तो भाई सोच समझ रहा, अपन शब्दों को इस्तेमाल भी सोच समझ रहा करना चाहिए,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
0: और
1: सही
0: अन है बिन भी अपन बचना चाहिए, कि अगर विश्व अपनी उधर पूर्ति हुए और पानी को भी अपन बचत करनी चाहिए, या अगर पानी बचल हो तो अपनो जीवन है जो बचल हो, पानी पर देखो अपनो पूरो जीवन को निर्माण या कैसे कहा जीवन की उत्पत्ति है जगह भी पानी से हुई, ये वास्ते अपन बिरखा रो टेम है, तो अपना जगह भूमिगत जल स्तर है बिन उपचो लेवा के वास्ते बरसात रो पानी अपन या परंपरागत अपनी नाडी है बावड़ी है वहाँ को अपन संरक्षण फुटड़ा टूटड़ा पड़े है तो बन अपन थोड़ा सा ठीक कर बांग मान अपन पानी की
1: और
0: बचत
1: प्रभु
0: करवाए।
1: भाई आपना काश्तकार भाई ई बात ने बहुत अच्छी तरह समझे छे, भाई सूखा प्रदेश में भी रहे छे, राजस्थान छे, पादे की कद कमी हो जावे कद कोई अतो पतो को ना, ई ताई ई महत्व ने तो वे अच्छी तरह ही समझे छे। और अब देखो आगे कार्यक्रम किसान वाणी ना आगे बढ़ावे ला आपा।
0: और आगे बढ़ाता था आपने किसान भाई तक जो की जानकारी है भी का वास्ते डॉक्टर महेश कुमार शर्मा जी अपने स्टूडियो में है, तो क्यों ने आशा भाई थे ही बातचीत मसु करो, और किसान भाई ने जी आज को जो विषय है अपनों किसानों की आमदनी बढ़ावा के वास्ते फल और सब्जियों को प्रसंस्करण ई विषय पर जानकारी आप डॉक्टर साहब सुन लेओ। और
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावा ने आशा धाबाई का घना घना राम राम सा। श्रोतावा आज अपने साथ स्टूडियो में है महेश के शर्मा, आप डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है शर्मा साहब, राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: और आज आप यहाँ से बात करेला किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए फल सब्जियों का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब यह बताओ सा कि जहाँ की आज को आपनों विषय है कि किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए वहाँ की आर्थिक स्थिति ने मजबूत करवा कहती है अगर आप फल और सब्जियों को प्रसंस्करण करा, पर इमें समझ वाली यह बात है कि प्रसंस्करण जो हो वो कहीं हो।
2: राम राम किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, यो प्रसंस्करण मतलब छे आपा जो बड़का आपने कहावत कहा कि रचा कि आम का आम और गुठली का दाम, तो ई के मान कहें छे आपा आजकल देखो किसान भाई कितनी मेहनत सू खेती करे और खेती करवा के बाद में आपा जी मान लो 100 किलो आप टमाटर पैदा कर तो भी लगभग 30 किलो टमाटर बेकार जाए सड़ गल जाए, जब सीजन हो तो भी में बहुत प्रोडक्शन होया करे और वो प्रोडक्शन आपने भी के मायने करीब करीब मतलब 30-40% खराब हो जाए, तो इन्हें बचावा आट है यो जो वेस्टेज है, एक तो इसको एनवायरनमेंट भी खराब हो, किसान भाई ने इनकम भी कम मिले और दूसरा कंज्यूमर ने भी अच्छी क्वालिटी कौन मिले, तो फूड प्रोसेसिंग से मतलब से किसान भाइयों कि जो भी खेती से आप आने फल एवं सब्जियां का जो प्रोडक्ट खाबा का मिले खाना का रूप में बदलबो या खाना का एक रूप ने दूसरा रूप में बदल खाबो, तो फूड प्रोसेसिंग में कई बातें होया करे जी आप फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एड कर दिया भी की मतलब जो बाजार मूल्य से मैंने बढ़ा दिया जी। अब आप आम की बात करा
1: जी,
2: तो आम जी सीजन में आपने मिले 50 रुपये किलो मिल जाए तो बी को पल्प निकाल, और अगर आप सर्दियों के मायने जो आपने फरवरी मार्च अप्रैल महीना में बेचा तो वो आप 200 रुपये का तक भी पल्प बिके, तो इस हिसाब से आप इन्हें प्रोसेसिंग कर और ज्यादा आमदनी कमा सका
1: जी। यानी कहबा को मतलब यही चे कास्ट कर पाया कि सीजन का टाइम जो चीज सस्ती चे उन्हें आप ले, अगर ऑफ सीजन में जबकि वह पैदा कोनो है उस टाइम बाजार में अगर बेचोला तो आपने उस चीज को अच्छो दाम मिल जाओलो, इसके लिए आपने वहाँ सामानों को फलों या सब्जी वहाँ की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ताकि वहाँ की जो उम्र है वह बढ़ जावे। वासा बहुत ही बढ़िया तरीको छे किसाना के लिए कि प्रोसेसिंग कर वे आपको जो सामान छे उन्हें उच्च दरां पर बेच सके छे और आपकी आमदनी ने बढ़ा सके छे। अब आपसे यह पूछबो चावला सा कि जहाँ प्रसंस्करण की आप बात कर रहे छा कि फल और सब्जियां का किसान भाई प्रसंस्करण कर कहीं आपकी आमदनी ने बढ़ा सके छे, तो प्रसंस्करण का तरीका जो छे वे कौन कौन सा छे, सामान्य तरीका से किसान भाई की तरीका से फल और सब्जियों को प्रसंस्करण कर सके छे।
2: देखो किसान भाई जो आप सामान्य तरीका फूड प्रोसेसिंग की बात करा प्रसंस्करण की बात करा पर्टिकुलरली फलान सब्जियां की, तो भी मैं आप गर्म कर कुछ हल्का गर्म कर भी उसमें आप जो फल एवं सब्जियां की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव पाया जाए जो फलान खराब करे भी उसमें बचा सका, डिब्बाबंदी जिन आप कैनिंग कहवा डिब्बाबंदी में आप कहें करा कि जो सब्जियां की डिब्बाबंदी करा तो वह आप ब्राइन सोल्यूशन में नमक का 2% घोल में करा और जो फलां की डिब्बाबंदी करा कैनिंग करा बी के मायने आप जो शुगर सिरप चीनी को जो चाशनी हुए बी के मायने किया करा जूस और जूस निकाल भी आप प्रोसेसिंग कर सका, और जूस ना आजकल तो फलां को जूस निकाल जूस ने ऐसा आप फ्रीज में रख डीप फ्रीज कर सका, दूसरों जूस ना आप कंसनट्रेट कर सका बी को पानी ने यो

0: पेट कर गरम कर वाष्प के बना उड़ा और बिना आपा गाढ़ो कर सका जिम पानी मिला बाद में पिला सका। इसके अलावा भी पाउडर फॉर्म में जूस ने पाउडर का रूप में बना सका है जिस भी को बोलूँ आयतन कम हो जाए बिना आपा मार्केट में बेचवा आसानी रहे। जी हाँ आपने एक गिलास बनाना तो आपने 5 ग्राम पाउडर बहुत छे
1: जी।
0: तो यहाँ पाउडर फॉर्म में भी जूस ने आप बना सका बिना पानी ने उड़ार। इसके अलावा फर्मेंटेशन आप देखो ला अचार बनाओ कैरी को अचार बनावा है गोंदा को अचार बनावा आपा लसोड़ा को अचार बनावा ये सब अचार फर्मेंटेशन द्वारा बनाए जाए और फर्मेंटेशन के बाद में बिना आपा तेल सुप्रज्वर करा। इसके अलावा जमना है फ्रीजिंग जी हाँ पल्प आम को पल्प निकाल लिया बिना आपा फ्रीज लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर दिया तो वो जम जाए और फिर जब यहीं कस्टर्ड एप्पल सीताफल को आपा पल्प ने निकाल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर फ्रीज कर लिया तो वो बिल्कुल ठोस बन जाए और जी यहीं आपन खानों से बिना तो बिना बाहर निकाल कमरा का टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जाए लो और फिर आपा बिना खा सका। इसके अलावा संशोधित वातावरण पैकेजिंग आजकल यह भी खूब चाल रही हो कि फलाने सब्जियां ने जो एनवायरनमेंट चाहे जी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग को भी सिस्टम चाल गो भी कमाए ने जी हाँ ऑक्सीजन की आप कम कर दिया कंसंट्रेशन CO2 ज़्यादा तो वही कमाए ने भी की जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया जब कम हो जाए ली और खराब होमा में टाइम लाग लो। पास्टराइजेशन पास्टराइजेशन में आप कहें करें कि टेम्परेचर दे स्टीम दे और भी को जो माइक्रोब्स पाए जाए भी सतह पर फल एवं सब्जियाँ पर बान आप खत्म कर दिया जिसमें भी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा भी कुछ और नई नई तकनीक ऐसे हैं जाके द्वारा किसान भाई फल एवं सब्जियां ने प्रोसेस कर और संरक्षित कर सके।
1: शर्मा साहब आपा किसाना का आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं और आप बहुत ही विस्तार से बता भी रहे हो प्रोसेसिंग को भी आप तरीको बताया कि की तरह से प्रोसेसिंग करी जावे छे। अब आपसे यह जानबो चावला कि प्रसंस्करण का जो मोटा मोटा फायदा छे या आपा यह सोच लेवा की उद्देश्य ने ले प्रसंस्करण करो जावे छे और मुख्य रूप से इनका फायदा काश्तकार भाइयों ने की तरीका से मिले चाहे किसान छोटो होवे या फिर बड़ो।
0: देखो किसान भाइयों फलाने सब्जियां का प्रसंस्करण सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपनों जो उत्पादन आप करें वो पूरा को पूरा उत्पादन आपनों सेफ रहे और आपने भी उसमें ज़्यादा पीछा मिले आप बाजार में भेज दिया पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात जब बाजार में आपने भाव कम रहे हैं जहाँ टमाटर खूब पैदा होगा तो भाव कई बार देखा कि अपन तोड़वा को भाव कौन मिले तो भी टमाटर ने आप प्रोसेसिंग कर भी को चाहे पल्प बना रख लिया है फ्रीजिंग कर जिन्हें आप फिर जब टमाटर 50 रुपये किलो 100 रुपये किलो होगा तो बेच दिया यहीं भी को सॉस बना सका आप टमाटर केचप बना सका ये भी का वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है जी उत्पाद का आप वैल्यू मतलब भी की प्राइस वैल्यू बढ़ा दिया
1: कीमत
0: तो
1: बढ़ा दिया
0: कीमत बढ़ा दिया इस तरह से आप बाने संरक्षण कर सका। तीसरी बात जो आवे आप उत्पादन जो भी हुए तो वो आपने अगर बिना आप सड़वा गलवासु बचा लिया तो आप लोग वातावरण भी को मतलब शुद्ध रह लो। और चौथी बात है जो आप मतलब अच्छी क्वालिटी संरक्षण कर कंज्यूमर ने बेचाना तो कंज्यूमर का स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे और कंज्यूमर की भी की एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इन्हें खरीदवा की इच्छा जो रहे वह भी ज़्यादा रह ली। और जो सबसे बड़ी किसान भाई फायदा हो लो वो हो लो ई कमाए ने आपा ने किसान भाई ने इनकम जो है क्योंकि आज को टाइम छे आर्थिक युग छे बिना पैसा काम चालक तो किसान भाई ने आमदनी भी ज़्यादा हो ली करीब करीब डबल हो जाए ली तो ऐ सब चीज़ा देख रही आप प्रोसेसिंग को काम करा और किसान भाई की आमदनी बढ़ावा के बारे में सोचा।
1: शर्मा साहब अगर आप बात कर रहे थे शुरुआत में तो आप एक शब्द को उपयोग कर रहे थे कि कैनिन तो कैनिंग की जब बात करा चा या डिब्बा बंदी जी ना आप समझ सका चा सरल शब्द में उनका बारे में या बताओ सा कि जो काश्तकार भाया छे चाहे वो छोटो किसान हो बड़ो किसान हो वो की तरीके से इन्हें कर सके चे काई की विधि चे कितो पीसो लागे चे कितो समय लागे चे विस्तार से समझाओ सा।
0: देखो किसान भाइयों जो कैनिंग छे डिब्बा बंदी छे अब जी आप बात करा सब्जियां में कैनिंग की तो सब्जियां में कैनिंग जनरली मटर में हुआ करे मटर का पहले आप भी का छिलका ने छिला ला और फिर दाना निकालना बाने और बाद दाना निकाल अपना भी ने अच्छी तरह से धो लेना ग्रेडिंग कर लेना साफ सफाई कर लेना और फिर उनके बाद में बाने थोड़ा हीटिंग थोड़ा पास्टराइज करना गुनगुना पानी में और उनके बाद में आप वहाँ डिब्बा बंदी करा ब्राइन सॉल्यूशन में ब्राइन सॉल्यूशन में नमक को घोल 2% नमक का घोल के मायने बाने आप डिब्बा बंदी कर और फिर अच्छी तरह पैकिंग कर दिया और पैकिंग कर और फिर बाने आप अच्छी तरह जीवाणु रहित कर और अच्छी तरह मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख दिया वहाँ और जब ज़रूरत हो मार्केट में जी मटर को सीजन चले गए सर्दियों के बाद में तो गर्मियों के मायने आप मार्केट में निकाला और

0: अच्छी रेट पर किसान भाई माने बेच सके। यही बात करा फला की कैनिंग की, अगर जी आम की कैनिंग करा पा तो आम में क्या करा कि आम का छिलका ने पहली धोधार अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का आम आप सिलेक्ट करा और फिर वह आम जो सिलेक्ट कर लिया माने छील और फिर बाकी जो पल्प छे बिने टुकड़ा में काट और अच्छी तरह मतलब उन थोड़ो सो हल्को सो भाप दे और फिर आप उन्हें चीनी का घोल के अंदर और डिब्बा के अंदर डाल और अच्छी तरह बंद कर कैनिंग और पास्चराइज कर और फिर कोल्ड स्टोरेज में रखा। और जब आम को खावा को सीजन फ्रेश आम खावा को सीजन चले जाए सर्दियाँ में ऊँ टाइम आप इन्हें खावा के काम में ले सका।
1: यानी खेबा को मतलब यही चे काश्त कर भया कि साल भर सब्जियां और फलों की उपलब्धता के लिए और ऑफ सीजन में जी टाइम उत्पादन कौन हो वे ऊ टाइम अच्छी आमदनी लेबा के लिए ये दोनों ही तरीका बहुत बढ़िया छे कि आप प्रसंस्करण कर और कैनिंग कर भी फल और सब्जियां ने रख सको चो और आपकी आमदनी बढ़ा सको चो। अब आर आप निर्जलीकरण की भी बात करया चा तो आपसे विस्तार से जानबो चावेला काश्तकार भाई ने बताओ सा कि निर्जलीकरण से काई मतलब छे और इका काई फायदा छे और काई तरीका से करी जाओ।
0: जी हां बथुआ हो चो पालर हो चो आज हमने धूप में सुखा दिया करे चा और फिर धूप में सुकार जब ये को सीजन कौन रहे पालक को बथुआ को तो भी की सब्जी बनाया करे चा। पर आजकल वो धूप में सुखापा में जो सबसे बड़ी दिक्कत छे भी के मायन का है कि भी को कलर फेड हो जाए छे। अगर डायरेक्ट सनलाइट में सूर्य की धूप में ये हरी पत्तीदार सब्जियां सुखावला तो आप देखा होगा किसान भाई की सब्जियां को जो रंग छे वो हरे हो छे और अगर भी ने डायरेक्ट आप सूर्य की धूप में सुखा देना तो वो रंग उड़ जाए छे और हल्को पड़ जाए जो देख पा में अच्छो कौन लागे। आजकल जो छे सोलर ड्रायर आ रहा जो सूर्य की उष्मा में एब्जॉर्ब कर रहे हैं आजकल तो लाइट भी चला रहे हैं सोलर से तो सोलर ड्रायर आवे बाग मायने पाए सुखा सका हरी पत्तीदार सब्जियां ने और माने सुखा और फिर जब बाको ऑफ सीजन है या महंगी छे उन टाइम माने आप उपयोग में ले सका। जी करेलो छे करेलो अभी आप लोग खूब पैदा हो रहे हो अब ई टाइम ये करेला ने आप थोड़ा अच्छी तरह साफ सुथरो कर छील और नमक का घोल में थोड़ा धो और फिर भी ना आप अगर सोलर ड्रायर में सुखा लिया तो बिने ऑफ सीजन में आवा बेच अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही आपने हरी पत्तीदार सब्जियां में चाहे वो भथु हो चाहे चौलाई हो आपने चाहे पालक हो आज समय भी आप सोलर ड्रायर में सुखा और ऑफ सीजन में या जब भी बाकी रेट बाजार में ताज़ा पत्तीदार सब्जियां रेट ज्यादा हो तो आप बाने बेच अच्छो मुनाफो कमा सका। केवल सीधो सीधो एक ही सिस्टम छे कि जो भी खावा की चीज छे भी में जो पानी रह जे पत्तीदार सब्जियां या जो भी सब्जियां जब हमें 80 से ले 90 से 95% तक पानी रहे पत्तीदार सब्जियां में करा तो 90 से 95% तक पानी रहे तो भी पानी ने उड़ावो बस और जो भी मान ठोस पदार्थ छे वो ही आपने बचे रहो पानी बिल्कुल उड़ा देला जिसों की वो संरक्षित रह सके लंबा टाइम
1: यानी मॉइस्चर और नमी जो भी उन्हें खत्म करनी।
0: इसके अलावा जो भी जिया फल का बात करा फल के जिया छिलको उतरियो अब जिया नींबू में बात करा नींबू को छिलको उतरियो तो वो छिलका का पीसा है जिया किसान भाई के जान भाई आम का आम गुठली का दाम तो यही बात करूंगा जिया आम को पल्प भी आपने निकाल लिया आम की गुठली से स्टार्च निकाल लिया और वो स्टार्च जो वो आपने बहुत इंडस्ट्रीज में काम आया आजकल तो यही नींबू का मान नींबू की जो इवन छिलको है बीसो भी बीम तेल निकले बीम सुगंध निकले बीम रंग भी निकले नेचुरल तो ऐसे सब चीजा सो और मुनाफो जे जूस को तो पीसो मिली मिल गो और उनके अलावा जो भी का बाय प्रोडक्ट जो पहले किसान भाई यहीं फेंक दे जा तो बीसो भी आपने आमदनी मिल रही है आजकल तो न तो आप लोग एनवायरमेंट खराब है बीसू वातावरण खराब हो पॉल्यूशन कौन हो और पीसा भी मिला है डबल मुनाफा हो किसान ने तो ये सब चीजें कर रहा पा आजकल मतलब ज्यादा ज्यादा आमदनी कमा सका। जी हाँ नींबू का बीज का मौसमी को बीज बी के माने तेल पाए जाए छे तो बी को भी तेल निकाल और आजकल मार्केट में बेचो जाए और वो नेचुरल तेल तो बहुत ही महंगा हो जा करे बी जो सुगंध हो जाए बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि आजकल सिंथेटिक ज्यादातर सुगंध रही है मार्केट में आ रही है नेचुरल तो बहुत महंगी बिके तो इस हिसाब से अगर किसान भाई काम कर ला तो बहुत ज्यादा आमदनी वह कमा सके।
1: यानी कहबा को मतलब यही है कि थोड़ी सी आपने तकनीक जाननी चाहिए थोड़ी सी आपने जानकारी रखनी चाहिए पर हर एक चीज की वैल्यू चाहिए हर एक चीज की कीमत चाहिए कोई भी चीज बेकार को ना चाहे बीज हो छिलको हो अंदर को पल्प हो या कोई भी चीज हो वैसा बहुत ही बढ़िया तरीका से आप जानकारी दे रहे थे। श्रोताओं महेश के शर्मा डीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली अपनी साथ है और आज आपने बता रहे थे किसानों की आमदनी बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में। शर्मा साहब एक और जो तकनीक छे उको नाम काफी सुनबा में आवे छे स्पंदित विद्युत प्रौद्योगिकी तो यो काई छे काई तरीको छे ई तकनीक का बारे में भी माका जो काश्तकार भाई छे वाने विस्तार से बताओ ताकि वे जाने इन्हें काम में लेवे और आपकी जी की आमदनी छे उन्हें बढ़ा पावे।
0: स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी

0: के बारे में किसान भाई एक नई तकनीक छे, ये मैं कहें करा कि पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होया करे टेक्नोलॉजी एक छे, जिसमें हल्की फूड प्रिजर्वेशन तकनीक छे और लिक्विड प्रोडक्ट जिया जूस हो छे, हैं दूध हो छे, या जो फला की प्यूरी जो पल्प हो छे, बीमें नुकसानदायक बैक्टीरिया ने खत्म करवाट एक छोटी सी बिजली की पल्स, मतलब बिजली को बीमें करंट दियो जाए, पल्स दियो जाए, भी को इस्तेमाल हो छे और उनकी सेल्फ लाइफ ने बढ़ा दे छे, क्योंकि वो जो खराब करने वाला जो बैक्टीरिया या फंगस भी मुझे वह खत्म हो जाए इस बीच। साथ ही उनमें ताज़ापन में कम से कम असर डाले चाहे, और जो या स्पंदित विद्युत क्षेत्र प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी चाहे को इस्तेमाल और टेस्ट अलग अलग मकसदों से किया जाए, जी हाँ जूस ने प्रिजर्व कर बाटे या फलान को पानी निकाल बा की बेहतर बना बाटे सुखा बा पहली ट्रीटमेंट के तौर पर भी इन्हें यूज किया जाए, या बहुत अच्छी तकनीक चाहे नई तकनीक।
1: शर्मा साहब आप बात कर रहे थे बार फल और सब्जियां का बारे में, जो काश्तकार भाई फलों का बगीचा लगावे छे और वहां से आमदनी पावे छे, वहां के लिए आपसे पूछबो चाहूंगी कि जो अमरूद का प्रसंस्कृत उत्पाद छे वे कशा कशा छे और की तरीका से वहां से और अच्छी वैल्यू यानी कीमत ली जा सके छे।
0: देव किसान भाइयों, अमरूद ने जी पहले तो आप खावा चाहे तो ताज़ा फल नहीं खाया जा है, सीधो अमरूद ने खाया जा,
1: बिल्कुल,
0: पर आजकल अमरूद बहुत पैदा हो रही है और देश दुनिया के दूसरी जगह भी आप अभी ने एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अमरूद ने ताजा तो खा ही सके टेबल पर्पज के रूप में, तो खूब पैदा हो रही है तो आपने भी को प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन भी करना चाहिए, तो अमरूद का गुदा ना आप फ्रीजिंग लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रख सका, और जब ऑफ सीजन हो तो बिना आप जो रूम टेम्परेचर भी पर निकाल रहा आप रख दिया तो वो खावा लायक बन जाए। दूसरा आजकल आप देख रहे हो जूस भी पी रहा जो है अमरूद को, बहुत अच्छा लगे टेस्ट में, शादी ब्याह में लोग आजकल दे रहा चाहिए, तो अमरूद को आप मशीनों से जूस निकाल और बिना कंडेंस कर लिया थोड़ो है? पानी नोडा दिया और कंडेंस कर और फिर बिना लो टेम्परेचर पर कैंड डिब्बा में
1: डिब्बा
0: बंद कर और रख कर लो टेम्परेचर पर रखा जिससे वो खराब कौन हो और जब जरूरत हो तो बिना आप मार्केट में बेच और अच्छा पैसा कमा सका। इसके अलावा आप आजकल देखो कि भी को लेदर गुआवा लेदर भी बन रहा है, गुआवा लेदर का हो जाए कि भी के माने गुआवा को जो पल्प है बिने थोड़ा मॉइस्चर ने सुखा और प्रिजर्व कर लिया करे और फिर जब भी जरूरत हो उन्हें आप अमरूद का पल्प की नहीं मतलब ठोस भी को आप खा सकें या बर्फी हो जाए भैया खा सका, तो ये कई अमरूद का प्रोडक्ट आजकल मार्केट में आ रहा है और आप माने बना सकें अमरूद।
1: अब जो नींबू और नींबू वर्गीय फल हो चाहे वाने की तरह से प्रसंस्कृत करे और कई कई उत्पाद नया बन प्रसंस्करण के बाद बाजार में आ रहे जाकि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है और काश्तकार भाई ने जागरूकता रखनी चाहिए, नई तकनीक ने अपनानी चाहिए और यहाँ सब्जियां ने और फलान ने प्रसंस्कृत करनी चाहिए।
0: नींबू, नींबू तो देखो किसान भाइयों आजकल आप देखो 200 रुपए किलो तक भी बिके, आजकल सस्ते हो गए मना गर्मी के टाइम तो 200 रुपए किलो तक
1: तो। बिल्कुल,
0: तो नींबू तो प्रसंस्कृत करवा को सबसे इम्पोर्टेंट फल है। अभी मैं नींबू का मायने कहें करा नींबू का रस ना आप प्रसंस्कृत कर सका और इको ड्रिंक्स बना सका, जूस बना सका नींबू का, लेमन जेस्ट नींबू को बाहरी छिलका में एसेंशियल ऑयल हो तो बीस आप तेज खुशबूदार स्वाद दे वालों तेल निकाल सका, दूसरों जूस को पाउडर बना सका नींबू का जूस को भी अगेन पूरा पानी ने आपा मछना उसमें ऑपरेट कर डाला सुखा डाला और फिर भी ने आपा पाउडर का फॉर्म में बना लिया और जब भी आपन जरूरत हो तो पाउडर में पानी मिलाया और आपा पी सका है, जो आपने तेल दे रहे आपने सुगंध दे रहे आपने कलर दे रहे नेचुरल, तो ये किसान भाई आटे नींबू तो एक वरदान से प्रकृति को और यो बहुत ही अच्छी आमदनी को साधन से किसान भाई की खेती कर और साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी एक ध्यान देवाई बात है कि आजकल जो सरकार है आपने चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे राज्य सरकार वो ये सब का अगर FPO बना लेना आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना लेना या खुद फार्मर भी इंडिविजुअल फार्मर भी कर सके तो माने ये जो प्रसंस्करण उद्योग लगा हुआ है फल एवं सब्जियां का सरकार एक सहायता भी दे रही, सरकारी सहायता मिल रही है तो सरकार भी अच्छा हो कि हमारा किसान भाई की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और माने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करा और बाकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेफ रहे जो कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत से पैदा करें और कंज्यूमर ने भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले खावा।
1: शर्मा साहब बहुत ही विस्तार से हर एक चीज ना आप काश्तकार भाई ने बता रहे छो, अब जब अपनी बातचीत समाप्ति की ओर छे तो एक और सवाल मन में आ रहे छे वो आपसे जानबो चाहवेला कि फल और सब्जियां का प्रसंस्करण का बारे में आप इतनी देर से बात कर ही रहा, काफी सारा फायदा तरीका आप बताया भी, अब कहीं कोई नुकसान भी चाहिए या कहीं सावचेती बरतनी चाहिए या भी बताओ।
0: देव किसान भाई हर चीज आप कहीं भी काम करा लाभ भी हो चाहे तो भी का नुकसान भी हो जाए,
1: बिल्कुल
0: जी आप खानो ही छे खानो अगर आप जितनी भूख से उतना खावाला तो वो फायदो छे,
1: बिल्कुल
0: और ज्यादा खा लेना जी हाँ भी ब्याह शादी में गया अगर मिठाई विठाई थोड़ी ज्यादा खा लेना तो वो नुकसान भी कर जाए, तो यही आपने फल एवं सब्जियों को प्रसंस्करण भी दोनों छे में भी

लाभ तो बहुत ज्यादा छह ही छे, पर कुछ हानि भी छे। लाभ तो हमें बात कर ही चुका, किसाना ने इनकम अच्छी मिल ली है, पॉल्यूशन एटमोसफियर को कौन लो भी, वो जितना उत्पादन छे वो पूरा पूरा कंज्यूमर ने मिल लो, अच्छी क्वालिटी मिल ली कंज्यूमर ने, ये सब खावा ने, ऐसा सब तो फायदा छे। आमदनी भी किसान भाइया ने खूब मिल ली, पर कुछ नुकसान भी छे। जी आप बात करें कि कैनिंग, सब्जियां की कैनिंग आप करा ब्राइन सोल्यूशन में, नमक का घोल में 2% का में, तो बिग मान कहें कि सोडियम नमक मतलब ज्यादा रहते, सोडियम ज्यादा रहते तो वो आपने नमक थोड़ा खावा में ज्यादा चल जाए और वो आपने स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हुए। मतलब ये नुकसान इतना ज्यादा कौन है, जितने नुकसान आपने किसान भाइयों ने भी की मेहनत को रिटर्न नहीं मिले, कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी नहीं मिले और वातावरण ने भी दूषित करे, अगर फल सब्जी सड़ जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेग्लिजिबल छे। बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जी अपना कैनिंग सु टुकड़ा फल का जब निकाल खाया तो बिना आप थोड़ा धोलिया साफ कर लिया, जिसको की वो जो चीनी की चास जब हट जाए, यही सब्जियां ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बा बंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धोलिया, जिसको की जो ज्यादा नमक छे वो निकल जाए, तो थोड़ी बहुत सावधानी रखकर आप।

0: करे अगर फल सब्जी सड़ जाए तो नुकसान तो बहुत ही नेग्लिजिबल छे। बिना आप थोड़ी सावधानी रखकर जिया अपना कैनिंग सू टुकड़ा फल का जब निकाल खाए तो बिना आप थोड़ा धोलिया साफ कर लिया जिसमें कि बुआ जो चीनी की चास से जब हट जाए। यही सब्जियां ने जो नमक का सिरप में आप डिब्बाबंदी करा तो जब भी यूज लिया तो बिना थोड़ा अच्छी तरह धोलिया जिसमें कि जो ज्यादा नमक है वो निकल जाए। तो ये थोड़ी बहुत सावधान रख रहे आप जो फल एवं सब्जियां प्रसंस बड़ा नुकसान बच सका आराम सु।
1: काश्तकार भाया किसाना की आय बढ़ावा के लिए फल और सब्जियां का प्रसंस्करण इके बारे में बहुत ही बढ़िया विस्तार सु बताया महेश के शर्मा आबडीन कृषि महाविद्यालय कोटपुतली। आज अपना स्टूडियो में आया और आपने जानकारी दिया इतना ही आपको खूब खूब धन्यवाद सा।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी। अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ
3: पर हम तो सब यही डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: जी
6: हाँ सा बहन कार्यक्रम के मायने अब अपन थोड़ा सा संगीत की तरफ चला और राजस्थान की मीठी चीज की एक लोक रचना है जो कि भाई लोगों तक पहुंचती करावा।
5: बिल्कुल सा

0: प्रभु भाई थोड़ा सो गीत आज आप कम सुना पाया चा उनके लिए माफी चाहवा चा।
1: बिल्कुल माफी चाहवा, लेकिन देखो एक मायने मौसम की बात हो रही है, बिजली चमकवा की बात हो रही है, तो मौसम की क्यों ना थोड़ी सी बात अड़ी कर जाए। तो देखो आज आप जयपुर का अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री लेर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रेबा को है, और न्यूनतम की अगर आप बात करें तो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड, और आसमान का मजा बादल है, वे छाया डरे सिर खटे खटे हल्की सी बारिश है और बिजली चमक की पूरी पूरी संभावना है।
0: और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि आज को जी को कार्यक्रम चे किसान वाणी उनको टाइम पूरा होते जा रहे है, तो श्रोतावा धीराव आज्ञा आशा ने
1: और प्रभु दयाल ने
0: चालार करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

मीडियम 526.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम सुननिया सगळ्या परिवाराने भाई राजन का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों, आपा सगळा के खेती खड़ मिणक हा, और एक खेती खड़ मिणक हमेशा ही प्रयास में लागे रहे कि जिया अपनी खेती है बिना आपा किया ज़्यादा सफल बनावा। खेती में होन आलो जी को खर्चो है बिना घटा गए, और आने वाली जी की आमदनी है बिना आपा क्या बढ़ा सका। इंग खातर आपा के है भांत भांत का प्रयोग आपकी खेती में करता रहा। कदे कदे बाऊं भाई लोगों आपने फायदो देखने मिले तो कदे कदे नुकसान भी हो जाए। पर आपने घर का जी का बड़ा बुढ़ा है बांगी अगर आपा माना तो हमेशा वह आई बात कह करता कि जिको आदमी बदलाव के सागे चाले, बदलाव ने स्वीकार करे, जीवन में हमेशा भी ने और लोगों की तुलना में ज़्यादा सफलता मिलता है। खेती पाती की तरफ चला एक बार, और ई कड़ी में बात करा आज बिरखा को जिको पानी है बिंगो सदुपयोग आपा किया कर सका हाँ। आपा सगला जाना हाँ कि जिको पानी है वो अपने जीवन को आधार है। पृथ्वी पर जीवन को जिको अस्तित्व है वो पानी के बिना संभव ही कोनी। बढ़ती जनसंख्या है, औद्योगिकरण हो गयो, और भूजल को जिको बहुत ज़्यादा दोहन होने लाग रहे बिंग कारण के कठे कठे देखा आपा तो बहुत भारी पानी को जिको संकट है वो एक गंभीर समस्या बन गई है। अपने भारत में बिरखा को जिको अधिकांश पानी है वो बिना उपयोग के नदियां के माध्यम के समुद्र में चले जावे हैं। जे बिरखा के पानी को आपा सही तरीकों संग्रह कर लेवा और बिंग बाद आपा जब बिना उपयोग करा तो पानी को जिको संकट है बिना आपा काफ़ी हद तक कम कर सका हाँ। इंग खातर बरसात के पानी को जिको सदुपयोग है वो आपने आज के टाइम की आवश्यकता है। बिरखा जी की है वो प्रकृति द्वारा देड़ो अपन एक अमूल्य उपहार है, और वो पानी है जिको नदियाँ, तालाब, झील और जिका भी भूजल स्रोत है बांग माध्यमों भरे हैं। खेती, पेयजल, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण ऐसा सगला बिरखा के पानी के ऊपर निर्भर है। जब बिरखा कम हुए या आपा बिरखा के जिको पानी है बिंगो संरक्षण ना करा तो कई बार देखा बहुत सा ऐसा इलाका है जिठे पानी को संकट है, कृषि उत्पादन में कमी है और सूखा वर्गी जी की समस्या है वह आमतौर पर देखने मिल जाए।

नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार

0: जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: संदेश पहला भाई लोगों सुनो आप भजन। चला एक बार फिर हूँ अपनी खेती पाती की दुनिया में और बात करा अपने भारत देश में देखा तो खेती पाती की हमेशा प्रधानता रही है, पर खेती पाती के अलावा भाई लोगों पशुपालन भी अपने किसान परिवार के आए हुए एक महत्वपूर्ण स्रोत हमेशा सामने निकल के आए हुए हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या अन्य कोई भी पशु है जिसको दूध उत्पादन देवे, ऊन उत्पादन देवे या अन्य और भी कई तरीका के उत्पादन के सागे सागे कृषि कार्यों के माध्यम किसान परिवार आपकी जीविका चलावे और पशुधन हमेशा इमें महत्वपूर्ण योगदान देवे। बात करा अपने वर्तमान मौसम की तो मानसून को मौसम जठे हरियाली और चारा की उपलब्धता बढ़ावे बठे ही कई प्रकारों पशुओं खातर रोग संक्रमण और परजीवियां ने फैलाने को भी कारण बने हैं। तो इनके खातर ई मौसम में अपने पशुओं की विशेष देखभाल करनी बहुत जरूरी हो जाए। मानसून में पशुओं ने होने वाली कई प्रकार की प्रमुख समस्याएं देखने मिले जियाँ पशुशाला में नमी रहनो और गंदगी बने रहनो, खुरपका, मुँहपका, गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर जी का कई ऐसा संक्रामक रोग है बांगो खतरों बढ़ जाए, जू किलनी मक्खी और माछरा की जी की संख्या है बा बढ़ जानो, पानी है जी को वो दूषित हो जानो और सड़े गुड़े जी को चारों है वो खाया हूँ पशुओं की पाचन संबंधी जी की क्षमता है बा कम होनो और बा में रोग फैल जाना। इनके अलावा देखा तो कई बारी खुरा में सड़न और त्वचा रोग भी पशुओं ने हो जाए। तो ई मौसम में अपने जी का पशु है बांगी देखभाल करण खातर किसान भाई कई उपाय उपनास कहे जिया सबों पहले तो जिकी पशुशाला है बिना पा साफ सुथरी और स्वच्छ रखने के सागे सुखी रखा, पशुशाला ने साफ सुथरो रखा, हवादार बनाए रखा, बिरखा गुजी को पानी है वो पशुशाला में जमा ना होने देवा, फर्श पर हमेशा सुखी बिछावन आपा बिछा के रखा और टाइम टाइम पर चूना या कीटाणुनाशक जिकी भी दवाइयाँ हैं बांगू छिड़काव करता रहा। खान पान पर बात करें तो पशुओं ने संतुलित और स्वच्छ आहार आपा हमेशा देता रहा, केवल ताजा और हरे चारों आपा बने खुआवा, सड़े गले या फफूंद लगो कोई भी प्रकार को गीलो चारो है वह की भी लापरवाही में आपा बने ना देवा, पशुओं ने हमेशा संतुलित आहार के सागे खनिज मिश्रण और नमक खुआवा, चारा ने सूखी और सुरक्षित जगह पर रखा। इनके अलावा पीण को जिको पानी है भाई लोगों वो हमेशा स्वच्छ और ताजो पानी आपा बने पियावा, पानी का बर्तन है बांगी नियमित तौर पर सफाई करा और कठे जमा हुएडो या रुकड़ो जिको पानी है वो पशुओं ने ना पियावा, रोगों बचाव खातर समय समय पर टीकाकरण करवा और विशेष तौर पर देखा तो खुरपका, मुँहपका, गलघोटू या ब्लैक क्वार्टर के विरुद्ध आपा ज़्यादा सचेत हो गए काम करा, हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही पशुओं ने दवाई देवा। बीमार पशु है जिको बिना आपा बाकी स्वस्थ पशुओं अलग रखा और तुरता फुरता आपा बिंगो इलाज करावा, बाहरी जितना भी परजीवी है बाऊ सुरक्षा बना के रखा और पशुओं का जिका खुर है बांगी भी नियमित देखभाल करता रहा, साफ सफाई करा, ज़्यादा टाइम तक पशु कीचड़ में ना खड़े रहे इंगो भी आपा ध्यान रखा, दूध देने वाला जिका पशु है बांगी भी आपा अच्छे तरीकों देखभाल करा, दूध दूणू पहले और बाद में थना ने पूरी तरीकों साफ कर गए धो गए सुखा देवा और थना की स्वच्छता बनाए रखने खातर थनेला वर्गी कई बीमारी है भी बचाव करा, मानसून में कई सावधानियां भी हैं जिको भाई लोगों आपने रखनी है जी, पशुओं ने बिजली कड़कन के टाइम पर या तेज बारिश के टाइम खुले जगह पर आपा ना बांधा, लंबे टाइम तक पशु गीलो ना रवे बिंगो भी आपा ध्यान रखा और पशुओं ने ज़्यादा कीचड़ आड़ो जिको भी क्षेत्र है बठे चराणु बचावा, कोई भी बीमारी का लक्षण जब आपा ने दिखाई देवे तो तुरंत पशु चिकित्सक को आपा संपर्क करा, क्योंकि पशु स्वस्थ रहेगा तो क्या है दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, रोगों पर होने वाला जिको खर्चो है वो भी कम हो जाएगा और पशुओं की कार्यक्षमता और उत्पादकता दोनों बढ़ जाएगी और सब जरूरी अपने किसान परिवार की जी की आय है भी में भी आपा ने बढ़ोतरी

दिखने मिलेगी। तो सगला किसान भाई जानकारी ध्यान में रखे और पशुओं ने अच्छो स्वच्छ और संतुलित आहार खुआवे और बांगे स्वास्थ्य को पूरा ध्यान रखे। कभी भी यहाँ लागे कि पशु ने कोई प्रकार की समस्या होने लाग रही है तो नज़दीक का अपना कोई भी पशु चिकित्सक ने बुला के तुरंत बिंगी आपा जांच करवावा। और जानकारी आपा आगे कार्यक्रम में और भी साझा करांगे थार सागे। चल आपा एक बार मनोरंजन की तरफ और सुना देवा थाना वो गीत लियो सुनो सा।

सुनो भाई लोगों, आपा गीत चला एक बार फिर आपा अपने खेती पाती की दुनिया की तरफ और बात कर ले वहाँ अपने किसान भाई जी का। नरमा की फसल लगा रखी है भी मैं क्या खरपतवार नियंत्रण में कर सके है, क्योंकि आपा सगला जाना हाँ कि नरमा की आपने जी की फसल है वह प्रमुख नकदी फसलों में एक है। और कपड़ा उद्योग की बात करें तो मुख्य जी को कच्चो माल है बिंग तौर पर काम आवे, सब जरूरी किसान परिवार की आय को महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम हावे। तो इनके खातर अच्छी उपज जी की है बालेन खातर आपने खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरपतवारों होने वाला कई प्रकार का नुकसान है जिका वो किसान भाई परेशान रहे, जिया फसल की जिकी बढ़वार है वह टाइम के सागे धीरे होने लग जाए, माटी के मां नमी और पोषक तत्वों की कमी हो जाए, कीट और रोगों को जिको प्रकोप है वो बढ़ने

आग जाए। सिंचाई और जिका उर्वरक है बांगू भी फायदो धीरे धीरे कम हो जाए और उपज के सागे जिका रिश्व बनने लाग रहे है बिंगी गुणवत्ता में भी कमी आने लाग जाए। तो नरमा का जिका प्रमुख खरपतवार है बिंग ऊपर आप बात करा तो बीमा वह चौड़ाई हिरणखुरी बथुओ दूब घास सावा और मोथा आने नियंत्रित करण खातर आप कई तरीका का उपाय उपन्यास कहाँ जिमें सबू पहला आवे सांस्कृतिक उपाय जिमें आप ध्यान रखा कि प्रमाणित और शुद्ध बीज को आप प्रयोग करा समय पर बीजांत करा उचित पौधा की जिकी दूरी है वह बनाकर रखा और खेत की समय समय पर सफाई करता रहा। सबू जरूरी बात फसल चक्कर जरूर अपनाता रहा। इनके अलावा यांत्रिकी जिको नियंत्रण है अभी मैं बात करा तो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आप पहली निराई गुड़ाई करा 40 से 45 दिन बाद आप दूसरी निराई गुड़ाई जरूर करा। खुरपी कुदाल या जिको व्हील हो है बिंग उपयोग आप कर सका हाँ और बिरखा या सिंचाई के बाद निराई करनो ज़्यादा प्रभावी मान्यो जावे। रासायनिक नियंत्रण की बात करा तो इनके खातर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आपा जिका भी कीट नियंत्रित करण वास्ते है खरपतवार नियंत्रित करण वास्ते है दवाइयाँ आपने बताई दी हुए है बंगो आपा प्रयोग कर सका हाँ। जरूरत होने पर आपा खरपतवार खातर जिका भी खरपतवार नाशी है बिंगो उपयोग कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेकर कर सका हाँ। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो इनमें समय पर निराई गुड़ाई जरूरत के हिसाब आपा रसायनों को प्रयोग करता रहा खेत की समय पर निगरानी और स्वच्छ कृषि और फसल चक्र आपा अपनावा। मूल तौर पर खरपतवार नियंत्रित करनो अपने किसान भाइयों ने के फसल की स्वस्थ और तेज बढ़वार मिले पोषक तत्वों और पानी को अच्छा उपयोग हो जाए और कीट रोगों का प्रकोप समय समय पर कम होने लग जाए उपज और रेशा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और सागे सागे किसान परिवार ने ज़्यादा आर्थिक लाभ भी देखने मिले है। अब चला भाई लोगों कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ। आज थाने गीत की जगह सुनावांगा रागनी लो सुनो सा।

भाई लोगों, आपने ताई दो तीन मंडियां का आज का बाजार भाव पूक्ति होया है। बे आपा थर सा गए बाँच लेवा। सब पहले सूरतगढ़ मंडी में आज कणक बिक्की 2561 रुपयों ले गए 2588 रुपया कुंटल। चिना का भाव उगड़े आप 5551 रुपया कुंटल। ग्वार बिक्की 5640 रुपयों ले गए 5655 रुपया कुंटल। और मूंग का भाव रहा 6290 रुपयों ले गए 6662 रुपया कुंटल। रायसी नगर मंडी में आज ग्वार बिक्यो 5731 रुपयों ले गए 5760 रुपया कुंटल। चिना का भाव उगड़े 5773 रुपया कुंटल। जो बिक्यो आज 2393 रुपया कुंटल। कणक का भाव रहा 2560-2771 रुपया कुंटल। और सरसों बिकी 7467 रुपयों ले गए 8000 रुपया कुंटल। श्री गंगानगर मंडी

में आज 1400 बयासी कणक बिकी 2750 रुपये कुंटल, दड़ा वाली कणक बिकी 2500 ले गए 2560 रुपये कुंटल। दूसरी कणक और जी की बिकी बाद 2600 ले गए 2754 रुपये कुंटल। जोगा भाव रहा 2400 ले गए 2450 रुपये कुंटल। ग्वार बिक्यो आज 5500 रुपये ले गए 5791 रुपये कुंटल। चिणा का भाव उगड़िया 5476 रुपये ले गए 5730 रुपये कुंटल। और सरसों बिकी 7550 रुपये ले गए 7876 रुपया कुंटल।

संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50,00,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा

शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा।
इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने

नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और YSR कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के बृजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष SIT का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा

0: कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। सभी श्रोताओं को राजेंद्र शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज 1 अगस्त है और आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस महान अभिनेत्री को जिनकी अदाकारी, शायरी और संवेदनशील अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिन्हें हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी जीवन में अनेक यादगार भूमिकाएं निभाई। बैजू पावरा, परिणीता, साहिब बीबी और गुलाम, दिल एक मंदिर, काजल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। उनके फिल्मी सफर की सबसे चर्चित और यादगार कृति रही फिल्म पाकीज़ा, जो उनके जीवन की अंतिम और सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म पाकीज़ा का निर्देशन कमाल अमरोही ने किया था। संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद और नौशाद, जबकि गीत लिखे थे कैफी आजमी, कैफ भोपाली, मजरू सुल्तानपुरी और कैमर जलालापाती ने। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म पाकीज़ा के इस गीत के साथ।

वाह क्या बात है, ये गीत सुनते ही मानो बीते दौर की खुशबू ताज़ा हो जाती है। दोस्तों आज मीना कुमारी को याद कर

वाह क्या बात है, ये गीत सुनते ही मानो बीते दौर की खुशबू ताज़ा हो जाती है। दोस्तों, आज मीना कुमारी को याद करते हुए हम उनके उस योगदान को भी नमन करते हैं जिसने हिंदी सिनेमा को संवेदनशील अभिनय की नई ऊंचाइयां दी। वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनके निभाए किरदार हमेशा जीवित रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पाकीज़ा का ये लोकप्रिय गीत।

इस खूबसूरत गीत के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। महान अभिनेत्री मीना कुमारी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। मैं आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी पाकीज़ा। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं प्रशांत। प्रशांत नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स सेन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स सेन के साथ खेल की हर बात।

0: शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन आज भारत ने 3 स्वर्ण सहित अब तक 7 पदक जीते। बॉक्सिंग में आज 7 और भारतीय खिलाड़ी फाइनल में उतरेंगे। भारत की तनुज शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम 5वें स्थान पर रही और गुवाहाटी में डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीत के साथ शुरुआत की।
1: खेलों के आज 10वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में अब तक 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया है। पैरा शॉटपुट के F57 वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है। पुरुष ट्रिपल जंप में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का
3: भारतीय मुक्केबाजों से जैसी उम्मीद थी वैसी ही शुरुआत मिली। महिला मुक्केबाजों ने महज 30 मिनट में 2 गोल्ड देश को दिलाए। पहले प्रीति पवार और फिर जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्डन पंच लगाए। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेलगाडो के खिलाफ 5-0 से फाइनल बाउट जीती। SEC हॉल 5 में पहले राउंड में सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में 10-10 अंक दिए। दूसरे राउंड में एक बार फिर प्रीति ने सभी जजों से पूरे अंक हासिल किए। एक ओर प्रीति के हर एक पंच में दम दिख रहा था तो दूसरी तरफ डेलगाडो के पंच सही लैंड नहीं हो रहे थे। तीसरे राउंड में फिर प्रीति ने अपनी पावर दिखाते हुए सभी 5 जजों से 10-10 अंक हासिल करते हुए गोल्ड सुनिश्चित किया। उन्होंने इस गोल्ड को खास बताया।
4: I am really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely, I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India. Thank you so much everyone for supporting me and motivating me. Keep supporting, keep motivating me.
3: वहीं जैस्मीन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आइलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पहला राउंड 3-2 से जैस्मीन के पक्ष में रहा था, लेकिन अगले राउंड में जैस्मीन पूरी तरह से विपक्षी बॉक्सर पर हावी नजर आई और 5 जजों ने फैसला उनके पक्ष में दिया। जैस्मीन ने तीसरा राउंड भी 4-1 से अपने नाम करते हुए देश को 7वां गोल्ड दिलाया। उन्होंने यह पदक देश को समर्पित किया।
4: I want to dedicate to my country India and the people who supports me throughout my whole journey. This is first time in Commonwealth Games and we create a history. We all are well prepared for this moment and we did this for our country. We are very happy. My aim is to go in Olympics and I'll give my best there and also won a medal for my country.
3: लेकिन पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह मानदेन गबम का जादू ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर जॉय डिस्किन के खिलाफ नहीं चला। जादूमणि ने अच्छी शुरुआत की और पहले राउंड में 3-2 से जीत

0: हासिल की, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। दूसरा राउंड ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर ने 5-0 से अपने नाम किया। तीसरे राउंड में एक बार फिर विरोधी मुक्केबाज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत हासिल की। इस हार से जादूमणि को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जीत के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
1: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
0: उधर आज रात महिला 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है लवलीना ने फाइनल मुकाबले से पहले।
2: फाइनल के लिए मैं क्वालिफाई हो चुकी हूँ तो फाइनल और भी ज्यादा टफ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बार गोल्ड लेके जा सकती हूँ क्योंकि हम लोग का ट्रेनिंग भी अच्छा हुआ है तो जरूर इस बार गोल्ड ले पाएंगे।
0: एथलेटिक्स में भी आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। दिन का तीसरा गोल्ड एथलेटिक्स से ही आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 13.40 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल भी उनसे ज्यादा दूर नहीं रहे, शुभम को 13.28 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की लंबी छलांग भरते हुए रजत पदक पे अपना नाम लिखाया। उधर सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने 16.52 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। हम आपको बता दें कि पैरा स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते। पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने का लंबा इंतजार खत्म हुआ और 3 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य समेत 6 पदक झोली में आए। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला। पैरा खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 1 गेम्स रिकॉर्ड और 1 एशियन रिकॉर्ड बनाया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
3: और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को बॉक्सिंग में अभी और स्वर्ण पदकों की उम्मीद है। महिला वर्ग में कुछ ही देर में साक्षी 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रिंग में उतरेंगी। प्रिया 60 किलोग्राम, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। पुरुषों के वर्ग में सचिन 60 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगे। पुरुषों के पोल वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स 4x400 मीटर रिले में भारतीय टीम पदक जीतने की कोशिश करेगी। जूडो में उन्नति शर्मा महिला 63 किलोग्राम और हर्ष टोकस पुरुष 81 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। बॉल्स में महिला सिंगल्स के सेक्शनल ग्रुप सी के सेक्शन सी में नैनमोनी सैकिया दक्षिण अफ्रीका की ब्रिजेट हर्सेलमान से मुकाबला करेंगी।
4: वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वां दिन भी भारत के लिए बेहद यादगार रहा। खासकर जूडो खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इंजरी से वापस लौटे नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो में बेहतर प्रदर्शन किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
5: भारत जूडो में इससे पहले भी पदक जीतता रहा है, लेकिन पहले गोल्ड का इंतजार था। इस लंबे इंतजार को आखिरकार अस्मिता डे ने खत्म किया। त्रिपुरा की 23 वर्ष की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कनाडा की हेडी क्वाच को हराया। मुकाबले की शुरुआत में उन्होंने 1 अंक गंवाया और पेनल्टी भी मिली, लेकिन आक्रामक खेल जारी रखते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। गोल्डन स्कोर में अस्मिता ने निर्णायक अंक हासिल कर इतिहास रचा। अस्मिता ने बताया कि उन्हें गोल्ड जीतने का पहले से भरोसा था।
6: मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
5: जूडो में ही 23 साल के हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ड्स को वाजा अरी से हराया। 4 मिनट तक चले मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों को अंक नहीं मिले, लेकिन अंतिम मिनट में हर्ष ने निर्णायक दांव खेलकर बढ़त बनाई और गोल्ड अपने नाम कर लिया। गोल्ड जीतने के बाद हर्ष काफी उत्साहित थे।
7: आई वर्क हार्ड फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टुडे फॉर विनिंग गोल्ड हियर।
5: महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक के खिलाफ हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। करीब 7 मिनट तक चले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी अंक नहीं बना सका, लेकिन मैच में तीसरी वार्निंग मिलने के कारण यामिनी को शिकस्त झेलनी पड़ी। देश के स्टार जैवलिन थ्रोअर और

0: ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर तक भाला फेंका। अपने इस प्रदर्शन से नीरज संतुष्ट नजर आए।
1: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बढ़ाएं।
0: इसी स्पर्धा में यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। कठिन मुकाबले के बीच कांस्य जीत कर भी यशवीर खुश दिखाई दिए।
2: मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज्यादा खुशी है, सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने।
0: एथलेटिक्स में तेजस्विनी शंकर ने 10 अलग अलग इवेंट्स वाले डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रचा है। वो कॉमनवेल्थ में इस स्पर्धा में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनकी बातों से इस मेडल का महत्व समझा जा सकता है।
3: Feels pretty good actually. Obviously special. 4 years ago I had a bronze in the high jump and 4 years later to be able to win a medal in the decathlon. I think it's just a dream come true. There's a lot of scope for improvement and between now and LA, that's the goal, is to try and, you know, fix those events, get them up to standard and hopefully be competitive there.
0: हम आपको बता दें कि 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ वाले सभी इवेंट के आधार पर टोटल रैंकिंग बनती है। इस रैंकिंग के टॉप 3 प्लेयर्स को मेडल दिए जाते हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
4: उधर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
5: और प्रशांत, अब कॉमनवेल्थ गेम्स से चलते हैं दूसरे खेलों की तरफ। भारत की तन्वी शर्मा ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में यू सुन को हराया। वे टूर्नामेंट में अब एकमात्र भारतीय चुनौती हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन की नई उम्मीद तन्वी ने BWF सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत के खिताब जीतने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज ताइपे एरिना में दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी तन्वी ने अपनी सी काफी ऊंची रैंकिंग वाली 5वीं वरीयता प्राप्त वांग यू सुन पर सिर्फ 33 मिनट में आसानी से 21-17, 21-11 से जीत हासिल की और शान से खिताबी मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। खिताब के लिए कल उनकी टक्कर वियतनाम की गुयेन थुई लिन से होगी। अंतिम चार के मैच में तन्वी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आई और उन्होंने यू सुन पर एक बार जो पकड़ बनाई तो फिर विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। 2024 में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रही तन्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई है। खासकर पिछले 2 वर्षों में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। पिछले साल वे ओडिशा मास्टर्स सुपर 100 और गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 दोनों टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रही और उन्होंने 2024 में बॉन इंटरनेशनल और 2025 में डेनमार्क चैलेंज खिताब भी जीता था।
4: और अब धर्मेंद्र स्क्वाश पर भी बात कर लेते हैं। कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने 5वें से 6वें स्थान के प्लेऑफ में इंग्लैंड को 2-0 से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। रुद्र सिंह ने रेखा केमिसी को 11-5, 8-11, 11-5, 11-6 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद सानवी कलंकी ने ईव पार्किंग पर 11-6, 11-9, 11-9 से जीत हासिल की। इससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था।
5: दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में 4 स्थानों पर कब्जा किया। अब सभी अंतिम 4 मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के 4 स्थान पर कब्जा कर लिया।
4: पर अब बात फुटबॉल पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज पिछले विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ के शुरुआती मुकाबले में बोडोलैंड एफसी को 6-0 से हराया। विजेता टीम के लिए अलाउद्दीन अजराई ने हैट्रिक लगाए। बेहतरीन प्रदर्शन किया है धर्मेंद्र, गुवाहाटी में खिलाड़ियों ने।
5: जी, और अब तो समय ये भी कह रहा है कि श्रोताओं से विदा लेने का वक्त हो चला है। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीता

0: रामाराजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय

0: से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1,400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल ले आऊंगा। मेडल मैं मेरा अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए

0: 2000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Centre in Mysuru, credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
2: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarna Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

श्रोताओं, सुगम संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मेहती हसन।

0: जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे। करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम।
1: करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक ठौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम

मेहदी हसन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं।

एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छांह सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन, लेखन, संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो हम लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें,

हम मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी। हिंदी एक बड़ी भाषा थी क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व तो ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थीं, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी। अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला। और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनैतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए। और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय की हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं।

0: हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उन क्षेत्र के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से निश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमर कृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेर दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
2: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र प्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्केट जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते है, भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
2: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
3: एक समय पर भारत भारती की स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाथेय बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936

0: में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में। सुख शांतिमय सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड, भविष्यत खंड, मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
2: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
0: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
3: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
0: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
4: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, कलम का दम और सोजे वतन।
5: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल

0: अमर रचनाएं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
1: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
2: जब वे सूजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
0: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की पांचवीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने यह स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
1: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
3: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
0: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
1: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, व्यंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य

0: में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
4: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स। In tonight's National Program of Music, we bring to you a Carnatic classical vocal recital by Chinmaya sisters, Srimati Uma and Srimati Radhika. Chinmaya sisters are one of the leading and popular duo in the field of Carnatic music. With their mellifluous voices, spirited singing and strict adherence to classicism, the duo has captured the hearts of Rasikas worldwide. Chinmaya sisters are senior disciples of Padma Bhushan awardee Madurai Shri T.N. Seshagopalan and Kalaimamani Neyveli Shri R. Santana Gopalan and have successfully imbibed and observed the specialities of their guru's style in their singing. They have travelled extensively and performed in prestigious venues all across India and abroad. They are A-graded artists of Akashvani and have had the privilege of performing in many special programs organized by Akashvani and Doordarshan. In tonight's concert, Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika are accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on the violin, Shri B. Ganapati Raman on the mridangam and Shri N. Sundar on morsing.
3: कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं नाट्य राग और रूपक ताल में हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर की रचना शक्ति गणपतिम।
4: द कॉन्सर्ट फॉर टुनाइट बिगिंस विद द कॉम्पोजिशन ऑफ हरिकेशनल्लूर मुत्तैया भागवतर इन रागा नाट्य सेट टू रूपक तालम शक्ति गणपतिम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मा मव मीनाक्षी अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: You just heard to a Thani Avartanam played on the Mridangam by Shri B. Ganapati Raman and by Shri N. Sundar on Morsing.
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मन में, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashvani Chennai and was broadcast from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के एक कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक

0: भाजपा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।